आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस कान भाग 188। बजकर 45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा। ये आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुनेगा शायर और सेवानिवृत्त राजेश रेड्डी से बातचीत। 11 बजे रंग तरंग,

12 बजे यादों की महफिल और 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। 2:30 पर सुनेगा सदाबहार नगमे और 3 बजे सखी सहेली। 2 बिना जग सुना कहानी पद्मश्री भूरीबाई, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकार भूरीबाई के बारे में सुनिएगा। और मुझे कुछ कहना है, किस्तों पर खरीदारी कितनी सही, और कुछ उपयोगी टिप्स

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 188।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार और विविध भारती के स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: किलक की उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। श्री राम की महिमा का गान संत तुलसीदास ने जैसा किया है वैसा संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है और श्री अनूप जलोटा अपने कंठ से इन रचनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अपने सुरों से वे ऐसा चित्र खींचते हैं कि श्री राम बाल रूप में आंखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अनूप जी हमें इस भक्ति रचना के बारे में बताइए जिसका हमने जिक्र किया।
2: ठुमक चलत रामचंद्र सबसे पहले पंडित डीबी पलुस्कर जी ने गाया था और ऐसा गाया

क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से गाया, जिस प्रेम से गाया, वो उनका ही कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसा। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं, जिससे कि भजन औरों से बेहतर तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा अलग जरूर लगता है।

कि वो आयु है, वो अवस्था है कि अभी चलना सीख रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, कोई उठा देता है, फिर चलने लगते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि वो सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाए।

या जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जो इस योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो। तो बहुत सोचा और अंत में ये कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है। क्या

0: बहुत सुंदर। सचमुच हम आंखें बंद करके बैठे थे और जिस तरह से आपने शब्द चित्र उकेरा, आंखों के सामने उपस्थित हो गए थे श्री राम जी। अनूप जी, श्री राम भजन आपने खूब गाए हैं और खूब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से उनकी कौन सी महिमा गाने में ज्यादा आनंद आता है, उनके किस रूप को आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं?
1: भगवान राम के कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जैसे शबरी हैं, जैसे केवट हैं। तो केवट का एक भजन है, मैं बहुत गाता हूँ, तो यदि आप अनुमति दें तो मैं वो भजन आपको
0: बहुत सुना। अच्छा लगेगा।
1: राग गुजरी तोड़ी के रंग को लेकर इसे कंपोज किया गया है।
2: कभी कभी भगवान को भी

भगवान राम ने सोचा केवट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम ने पूछा, जरा स्पष्ट करो, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला,

0: ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्याम मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम के गाए इस गीत से।

इधर की नजर देख लो इधर चूड़ियों की तुम करो ना फिकर भूल न जाना दिल को लेकर घायल मन है जख्मी जिगर जब से लड़ी तुमसे नजर हम है उधर तुम हो जिधर आओ जिकार ने मिल के

मौली मिस्र गीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम का गाया रील का डब्बा फिल्म का गीत। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और गुलाम मोहम्मद ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए पतिता फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे पतिता फिल्म से। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई बाहों में खिली।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में परछाई फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। नूर लखनवी ने इस गीत को लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे हम।

0: दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था, नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

होती है कैसी बोल रही दुनिया। दाग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

0: यार मैं हूँ तेरा हसबेंड, तू है मेरी वाइफ,
1: यही अब सास तो रहेगा तेरी लाइफ।
0: लाइफ पे करेंगे हम फिर कभी गौर।

0: याद है तुझे वो मेरा तान तोड़ सांग
1: सांग खपा है तो वो थी मुर्गे की
0: बांग याद है तुझे वो मेरा तान तोड़ सांग
1: सांग खपा है तो वो थी मुर्गे की बांग
0: तूने उसी बांग पे कहा था वन सवार।

जग्गू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी मधुबाला चावेरी की, भरत व्यास की रचना आपने सुनी और हंसराज पहल का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूली बिसरी गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत सविता सिंह को दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्ते। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले लेते हैं आज का सुविचार। गौतम बुद्ध का कथन है, असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। यह था आज का सुविचार।

और अब डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। आज 14 मई है और 14 मई के दिन भी अन्य दिन की भांति देश दुनिया में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास बन गए। प्रमुख घटनाएं हैं 1811 ईस्वी में आज ही के दिन पराग्वे स्पेन की पराधीनता से मुक्त हुआ था। पहली बार किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज से उड़ान भरी थी आज ही के दिन 1908 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में आज ही के दिन इजराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1963 में आज ही के दिन कुवैत संयुक्त राष्ट्र का 111वां सदस्य बना था। भारत और मलेशिया के बीच 7 समझौते हुए थे आज ही के दिन सन 2001 ईस्वी में। और सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन भारत और रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए थे।

अब एक नजर डालते हैं 14 मई को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी 14 मई को सन 1657 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुण चंद्र गुहा का। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक मृणाल सेन का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1923 ईस्वी में। और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1984 ईस्वी में।

एक नजर उन विभूतियों पर जिनका निधन आज ही के दिन हो गया था। 1943 में आज ही के दिन निधन हुआ था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता अल्लाह बख्श का। प्रख्यात विद्वान तथा राजनीतिक नेता डॉक्टर रघुवीर का भी निधन हुआ था 1963 में आज ही के दिन। 1978 में आज ही के दिन निधन हुआ था प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि वृंदा करिंदकर का भी निधन हुआ था आज ही के दिन सन 2010 ईस्वी में। और सन 2011 ईस्वी में आज ही के दिन निधन हुआ था किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का। तो श्रोता, ये था आज के इतिहास। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आगे हम नजर डालेंगे रोहतास और कैमूर जिले की कुछ सांस्कृतिक और स्थानीय गतिविधियों के बारे में। पहले हम सुन रहे हैं ये भजन और इसे हमने लिया है गोभी फिल्म से।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे गोपी फिल्म से ये भजन। रचना थी राजेंद्र कृष्ण की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। अब आइए एक नजर डालते हैं रोहतास और कैमूर जिले के कुछ स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

सासाराम में 21 एवं 22 मई को शेरशाह सूरी महोत्सव होगा। इसमें मुशायरा एवं विचार गोष्ठी आयोजित होगी। जिला पदाधिकारी उदिता सिंह के निर्देश पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सर्वसम्मति से शायरों, कवियों एवं वक्ताओं का चयन किया गया है। मुशायरा में शायर जलील खैराबादी कानपुर, अहमद आजमी आजमगढ़, अनुज नाज फतेहपुर, चकाचौंध ज्ञानपुरी ज्ञानपुर, पूनम श्रीवास्तव मिर्जापुर, निजाम बनारसी वाराणसी सहित स्थानीय साहित्यकार डॉ. गुरुचरण सिंह, शायर मतीन सासारामी, कवि सरोज कुमार पंकज एवं आलम परवेज शामिल हैं। इनकी प्रस्तुतियां कार्यक्रम को साहित्यिक ऊंचाई प्रदान करेंगी तथा श्रोताओं को गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिलेगी।

रोहतास जिले में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने और मत्स्य पालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने मई माह में तालाब प्रबंधन को लेकर विशेष सलाह जारी की है। विभाग ने कहा है कि गर्मी के मौसम में तालाब की देखरेख और वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य बीज संचयन करने से उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोगों से बचाव संभव होगा।

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल स्तर पर आयोजित बैठकों में राजस्व कर्मचारियों की भागीदारी को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग के अवर सचिव अरविंद कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राजस्व कर्मचारियों को अपने पंचायत एवं हल्का क्षेत्रों को छोड़कर बार बार अंचल कार्यालय बुलाने से राजस्व कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न होती है। जारी निर्देश के अनुसार अब अंचल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली बैठकों में राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अब लेते हैं कैमूर जिले की कुछ गतिविधियां। दक्षिण बिहार बिजली कंपनी जल्द कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं के घर सोलर पैनल लगाकर बिजली आपूर्ति शुरू करेगी। जहां अधौरा क्षेत्र के 233 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है, अन्य प्रखंडों से भी उपभोक्ताओं का चयन हुआ है। कुटीर ज्योति के अंतर्गत उपभोक्ताओं की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल और सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

कैमूर जिले के 11 मॉडल स्कूलों के लिए डीपीएमयू गठित। कैमूर जिले के सभी 11 प्रखंडों में एक हाई स्कूल मॉडल स्कूल बनेगा। प्रखंड स्तर पर मॉडल स्कूलों में सभी सुविधाएं सुदृढ़ की जाएगी।

और कैमूर के भभुआसार में यातायात नियम तोड़ने वालों पर सीसीटीवी से रहेगी नजर। शहर में मुख्य चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी। भभुआ शहर के भीतर बेतरतीब खड़े होने वाले ई रिक्शा और ऑटो के लिए विशिष्ट पड़ाव चिन्हित होंगे।

तो ये थी संक्षिप्त जानकारी रोहतास और कैमूर जिले की स्थानीय गतिविधियों के बारे में। और अब एक नजर मौसम पूर्वानुमान पर। आज 14 मई है और रोहतास और आसपास के क्षेत्रों में आज वर्षा 6 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 65% और न्यूनतम 20% रहने की संभावना है। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो श्रोताओं, ये था मौसम पूर्वानुमान। और अब कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं एक और गाना, और गाने के बाद एक नजर होगी समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। पहले सुनते हैं ये गाना।

महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुन रहे थे धुंध फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत से संवारा था रवि ने। श्रोता भाई, नजर डालते हैं समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। तो रोज की तरह आज भी हमारे पास है चार दैनिक समाचार पत्र, जिनमें शामिल है प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान। सभी अखबारों ने इलेक्ट्रिक वाहन पर 1,00,000 की सब्सिडी को लेकर अलग अलग शीर्षक से खबर छापा है। प्रभात खबर लिखता है ईवी कार खरीदने पर महिलाओं को 1,00,000 की सब्सिडी। राज्य सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीदने पर प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। इलेक्ट्रिक चार पहिया, दो पहिया और तिपहिया वाहन खरीद में महिलाओं को अनुदान की राशि के साथ ही सभी गाड़ियों के निबंधन दर में भी 50% की राहत दी जाएगी। इसके तहत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन की कीमत कुछ भी हो, अनुदान 1,00,000 रुपया ही मिलेगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

इसी खबर को दैनिक जागरण इस शीर्षक से लिखता है, महिलाओं को ई कार पर 1 लाख और दोपहिया पर 12,000 का अनुदान। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय।

अब एक नजर कुछ अन्य समाचारों पर। प्रभात खबर लिखता है 10 लाख से ज्यादा कमाई करने वाले का गैस सब्सिडी नहीं, और राज्य में आज भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार। सीबीएसई 12वीं में पटना जोन के 74.45% विद्यार्थी हुए सफल, ये खबर दिया है दैनिक जागरण ने, और लिखता है कि पहली बार ओएसएम प्रणाली से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई। दैनिक जागरण की ये भी समाचार है कि नीट यूजी पेपर लीक में सीबीआई के देशव्यापी छापे, 5 गिरफ्तार।

हिंदुस्तान लिखता है, सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क डेढ़ गुना बढ़ाया और सीबीएसई 12वीं में इस बार 8.41% कम रिजल्ट। और हिंदुस्तान ने यह भी समाचार दिया है कि राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई।

खबर को प्रमुखता से छापा है। लिखता है, पीएम की अपील पर सीएम सम्राट चौधरी का एक्शन मोड। सम्राट का काफिला छोटा होगा, हफ्ते में एक दिन, नो व्हीकल डे। और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर, आरबीआई ने चेताया, जंग चली तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। ये भी लिखता है दैनिक भास्कर ने। और अब अंत में डालते हैं एक नजर खेल समाचारों पर। आईपीएल 2026 में मुंबई मैच में जीत की राह पर लौटना चाहेगा पंजाब। और थाईलैंड ओपन में श्रीकांत और सिंधु जीत के साथ अगले दौर में। विश्व चैंपियन बनने का रोनाल्डो के पास अंतिम चांस। मेसी के साथ 6 विश्व कप खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का भी मौका है रोनाल्डो के पास। तो श्रोताओ, इसी के साथ आज का नमस्ते रोहतास कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: ये था हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीला नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने इसके लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में

0: भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: एमएमटीपीए एलएनजी टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबूधाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम

0: में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं

0: कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2441 रुपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। देशभक्ति संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में देशप्रेमी फिल्म से ये देशभक्ति गीत। नफरत

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे देश प्रेमी फिल्म से ये देशभक्ति गीत, और इसी के साथ देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त लाल बहादुर का प्यार भरा नमस्कार, और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत भी।

चकाचक हिरला पान चबाए। आहा,

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम सुना रहे हैं आप सबों की पसंद पर डॉन फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। अनजान के बोल है और कल्याण जी आनंद जी की धुन सुनना चाहते हैं। थाना मोड़ गढ़नोखा जिला रोहतास से हमारे श्रोता मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुल निशा, सद्दा मंसूरी, नगमनिशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार,

0: रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बोलकी वाली, फलना झा और नयानगर सुपौल से हमारे श्रोता हैं श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार और आशुतोष कुमार। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
1: ओ खई के पान बना रस वाला।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं आप सबों की पसंद पर संगम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हजरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन, और इसे सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नारायण एस्टेट से लल्लन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। मिसर मोहला नारायण बाजार से हमारे श्रोता है भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू और बीके सोर गनैया। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है कलेर बिहार से हमारे श्रोता मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निगहत परवीन, सद्दा फारजू, साहिल अरमान, अजफर हमीद, तमीना मशकूर, शमा परवीन और नाहिद अख्तर के तरफ से भी। और आप सब हैं ब्रह्मपुरा मानीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज, आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की और नीतू। तो फिर से आप सबों की पसंद पर संगम फिल्म का ये गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पसंद आपके कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर समाधि फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में। मजरों के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। लचनपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा। और आप सब हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, आबिया नाज, साजिया शाही नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। कोकिलवाड़ा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख और नुजहत जहानाज। सैक्टोली समस्तीपुर से इसी गाने के लिए फरमाइशी पत्र भेजा है मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज ने। तो पेश है आप सब की पसंद पर ये गीत।

और कार्यक्रम के आखिर में हम सुना रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। एसएच बिहारी की रचना है और ओपी नैयर का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं डोंगरगांव से हमारे श्रोता राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का कौर और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोदले और आरती जोदले ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और आप सब हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिमा कौर। और यह हमारे श्रोता हैं माधेवघाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांस ठाकुर। नहोना से हमारे श्रोता हैं भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ, जगदीश, दशरथ, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। नैकागांव सासाराम से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोतो, इस गीत के साथ ही पसंद आपकी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमें खेद है कि समय अभाव के कारण ये गीत आपको पूरा नहीं सुना पाए। अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक

0: अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट उपचुनाव की मतगणना जारी। जदयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू राय समेत छह प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। और पटना, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया गया है। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना आज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आरा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर जदयू के कन्हैया प्रसाद तथा राजद के सोनू राय के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इसके अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। 12 मई को मतदान कराया गया था। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है। राज्य सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि दो पहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में भी महिलाओं को अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सभी गाड़ियों के निबंधन दर में 50% की राहत दी जाएगी।
1: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई अगले एजेंडा में।
0: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों ने भी अपने काफिले के आकार में कमी की है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रत्येक शुक्रवार को सार्वजनिक वाहनों या ई वाहनों के जरिए कार्यालय पहुंचने की अपील की है। तेल कंपनियां राज्य में अब 10 लाख से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस संबंध में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के निबंधित मोबाइल पर यह संदेश भेजा जा रहा है। बिहार राज्य LPG वितरक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में 7 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। यदि उपभोक्ता आपत्ति नहीं जताता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दरभंगा जिले में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही वे DMCH में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री के दरभंगा आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 30 मई तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता ने पटना में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि गरीब परिवारों के वृद्ध, निःशक्त, विधवा और कुष्ठ पीड़ित लोगों को विभिन्न योजना का लाभ लेने के लिए यह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इससे योजनाओं से वंचित पात्र लाभुकों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि 31 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत प्रगणक नागरिकों से 33 प्रकार के सवालों की जानकारी लेंगे। श्रीमती रंजीता ने लोगों से जनगणना के नाम पर साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील भी की है।
1: कोई भी जनगणना कर्मी आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी स्थानीय में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी सकते हैं।
0: जनगणना निदेशक की आकाशवाणी समाचार के साथ इस पूरी बातचीत को प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से प्रसारित सामयिक चर्चा के तहत सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम शनिवार शाम 7:52 से प्रसारित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए। देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभवाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत शाम 7:00 से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज ने लोगों से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में सहयोग की अपील की है।
4: शाम को 7:00 सायरन बजने के साथ साथ बिजली को कट कर दिया जाएगा, तो सभी नागरिकों से अपील है कि इस ब्लैकआउट की एक्सरसाइज में आप लोग संजीदगी से इसमें हिस्सेदारी लें और लाइट कट होने के बाद ब्लैकआउट के दौरान पूरे शहर में अंधेरा होना चाहिए, उस उद्देश्य की पूर्ति आप लोग सभी लोग मिलकर करें। प्रयास है ये, अभ्यास है ये, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
0: मौसम विभाग ने

0: आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
1: दिनांक 14 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मई महीने में प्रदेश में अब तक सामान्य से 170% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस बीच प्रदेश के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 38.8 और पटना का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 3 जून को पटना और अन्य जिलों में चयनित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होगा। असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटी की 173 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा अमृता ने कुछ देर के लिए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभाई। बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने अमृता को यह अवसर दिया। इस दौरान अमृता ने पुलिस पदाधिकारी बनकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। भागलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जनगणना कार्य में लापरवाही के मामले में 118 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इधर जिले में घरेलू गैस आपूर्ति में अनियमितताओं को लेकर छापेमारी अभियान के दौरान 4 गैस एजेंसियों के गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शिवहर जिला कृषि कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक विजेंद्र कुमार गिरी को 8,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी एक महिला से खाद दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर रिश्वत के रूप में रूपये ले रहा था। मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम ने स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्केनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। शम्स ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए यह पदक हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर में जापान में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा गेम्स की तीनों स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई। इसी खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 प्रस्ताव किए गए स्वीकृत। कैबिनेट का फैसला, 2030 तक बैटरी चालित वाहनों की 30% हिस्सेदारी करने की योजना। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, भाषाओं की खामोशी से बौद्धिक विरासत ही नहीं जिंदगी भी खतरे में। बुजुर्गों से संवाद, उनके किस्से देंगे नया जीवन। प्रभात खबर सीबीएसई 12वीं के नतीजे से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, साइंस में पटना के रोहन, आर्ट्स में अतुल और कॉमर्स में गया की माही कुमारी स्टेट टॉपर। आज अखबार ने लिखा है, बिहार के 8 जिलों में बनेंगे नए हाईटेक थाना भवन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट उपचुनाव की मतगणना जारी। जदयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू राय समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक चरपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। और पटना, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनाएंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और 10:05 पर साहित्यिक कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता और काव्य पाठ। सुबह 10:30 लोकमाधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम से लोकगीत और 10:45 पर रसधार कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। 11:00 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदन। शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी और संध्या 6:00 किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे किसान भाई आज सुनेंगे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए विषय पर डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा से ली गई भेंट वार्ता। इसके अलावा चर्चा होगी मिल्की मशरूम की खेती विषय पर। संध्या 6:30 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत और शाम 7:00 हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम

शाम 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से। शाम 7:50 मिनट से आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद।

रात्रि 9:45 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 बजे महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गजल। और रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। श्रोताओं, आज के तनाव भरे जिंदगी में लोग स्वाभाविक हंसी को भूल सा गए हैं। चिकित्सकों का कहना है, हंसना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। अन्य बीमारियों में भी खुश रहना या हंसना बीमारी से जल्दी निजात पाने में सहायक होता है, बशर्ते कि हंसी स्वाभाविक हो, बनावटी नहीं। तो श्रोताओं, चलिए आज गानों के माध्यम से हम हंसने हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, लतीफों से भरा हुआ, और खुलकर हंसने का प्रयास कीजिए।
1: सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए, कम से कम 700।
2: अच्छा दादा।
1: हाँ तो बच्चों,

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,

तो लतीफों से भरा ये गीत आपने सुना और इसे हमने लिया था अमृत फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और साथियों की। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम पड़ोसन फिल्म से सुना रहे हैं। इस गीत को सुनकर आपको हंसी भले ना आए, लेकिन जब पर्दे पर इस गीत को आप देखेंगे तो आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। महमूद, किशोर कुमार और सुनील दत्त का लाजवाब अभिनय आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। और श्रोताओं, कभी मौका मिले तो इस गीत को पर्दे पर अवश्य देखिएगा। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म का गीत किशोर कुमार मन्नाडे और महमूद की आवाजों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। अब हम सुनवा रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म का ये पैरोडी गीत, और इस गीत को सुनकर आपको अवश्य गुदगुदी होगी। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए एक फूल दो माली फिल्म के इस पैरोडी सॉन्ग को सुनकर आपको अवश्य गुदगुदी हुई होगी। और अंत में हम यही कहेंगे कि जिंदगी को बोझिल न बनाएं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है। हमें चाहिए कि हर हाल में मस्त रहें।

किशोर कुमार के गाए जमीर फिल्म के इस गीत के साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे थोड़ी देर में विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत, इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविन्द्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की

एएचके के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह पति, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या। साल 2008 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार प्रजातिया द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नान। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमरीका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया।

आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। यह आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। साहित्यिक कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं वार्ता और काव्य पाठ। पहले लीजिए सुनिए ददन पांडे की ये पूर्व प्रसारित वार्ता, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में आकाशवाणी की भूमिका।
1: आज का युग सूचना का युग है। आज जो जितना अधिक सूचना संपन्न है वह उतना ही विकसित है। सूचनाओं का विस्तार संचार माध्यमों के जरिए होता है। पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन के बाद अब इंटरनेट भी एक प्रमुख संचार माध्यम बन गया है। आज विकसित समाज में उसे पिछड़ा माना जाता है जो इंटरनेट की दुनिया से नहीं जुड़ा है। विकास के दौर में संचार माध्यमों का विकास भी निरंतर हो रहा है। पत्र पत्रिकाओं का जनमानस पर अच्छा प्रभाव रहा है। लोग रोज रोज की घटनाओं से परिचित होने के लिए समाचार पत्रों के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें अनेक तरह की जानकारियां मिलती हैं। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि लोग शिक्षित हों। शिक्षित व्यक्ति ही अखबार पढ़ सकता है। भारत जैसे देश में जहां अभी भी सभी को शिक्षित नहीं किया जा सका है और निरक्षरों की बड़ी संख्या है, उनके लिए पत्र पत्रिकाओं का कोई मतलब नहीं है। फिर पहुंच के लिहाज से पत्र पत्रिकाओं का प्रसार क्षेत्र शहरों और कस्बों तक सिमटा हुआ है और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी आज भी उससे वंचित है। यद्यपि आज़ादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ होने के बाद संचार माध्यमों में एक युगांतकारी शुरुआत हुई। एक छोटे से रेडियो सेट पर दूर दराज की आवाज सुनना जादुई चमत्कार जैसा था। वैज्ञानिक विकास के क्रम में फिर टेलीविजन आया, जिसकी आज बड़ी धूम है। आज उससे आगे इंटरनेट का जमाना आ गया है। विकास के दौर में नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। इंटरनेट आज भी आम आदमी के पहुंच से बाहर है। टेलीविजन ने उससे आगे की दूरी तय की है और उसकी पहुंच बढ़ी है। किंतु सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी रेडियो यानी आकाशवाणी की पहुंच सबसे अधिक है। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके संवाद सिर्फ सुने जाते हैं और वह हर आदमी उसके संदेश को सुन सकता है जो वधिर न हो। आकाशवाणी का श्रोता पढ़ा लिखा नहीं हो फिर भी वह उसका लाभ उठा सकता है। टेलीविजन और इंटरनेट के लिए बिजली आवश्यक है, लेकिन रेडियो के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं है। आज के महंगे युग में रेडियो सेट 100-200 रुपए में भी उपलब्ध हैं। अत्यंत सस्ता होने के कारण यह रेडियो सुदूर देहातों तक, जहां बिजली नहीं पहुंची, वहां भी अपनी पहुंच बना चुका है। जंगल, पहाड़, खेत खलिहान, कहीं भी रहकर रेडियो का प्रसारण सुना जा सकता है। आज देश भर में 188 आकाशवाणी के स्टेशन हैं, जिससे पूरे देश में रेडियो के संदेश प्रसारित होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 80% आबादी गांव में बसती है। कृषि के विकास के लिए नई वैज्ञानिक जानकारियां आकाशवाणी

के कार्यक्रमों में नियमित दी जाती हैं। कीटनाशकों का प्रयोग कब और कैसे करना है, उर्वरकों का प्रयोग कब कब करना है, अच्छे किस्म के बीज कहाँ से प्राप्त होंगे, किस मौसम में किस चीज़ की खेती करना लाभदायक होगा, इस तरह की तमाम जानकारियाँ किसानों को नियमित आकाशवाणी के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में और क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती हैं, जिससे सुदूर देहाती क्षेत्र के अनपढ़ किसान भी लाभ उठा सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती और उत्पन्न अनाज के सही मूल्य कैसे और कहाँ मिलेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त कर किसान लाभान्वित होते हैं। कृषि संबंधी रेडियो कार्यक्रम अक्सर शाम को प्रसारित किया जाता है, जब किसान दिन भर के खेती के कार्य से मुक्त होकर घर लौटते हैं। किसान शाम को कृषि कार्यक्रम और समाचार जरूर सुनते हैं, जिसमें उन्हें प्रदेश भर की सूचना और मौसम की जानकारी मिल जाती है। देहात में लोग शाम को नियमित एक जगह बैठकर रेडियो प्रसारण सुनते हैं और फिर उस पर उनके बीच चर्चा होती है। बीच बीच में क्षेत्रीय भाषाओं के गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होता है। आकाशवाणी की पहुंच सुदूर देहातों तक है, जहां अन्य कोई संचार माध्यम नहीं पहुंचते। आज सुदूर देहातों में भी वैज्ञानिक तरीके से खेती होने लगी है। कम सिंचाई में अधिक फसल लेने की विधि से अनपढ़ किसान भी लाभ उठा रहे हैं, और यही कारण है कि आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। किसानों को लाभप्रद खेती के लिए शिक्षित करने में आकाशवाणी ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। देहातों का एकमात्र संचार माध्यम होने के कारण आकाशवाणी द्वारा प्रसारित सूचनाएं दैववाणी के रूप में सत्य मानी जाती हैं। लोग आकाशवाणी द्वारा घोषित समय से अपनी घड़ी का समय मिलाते हैं। मौसम के पूर्वानुमान से ग्रामीण काफी लाभान्वित होते हैं। बाढ़ जैसी विपदा में भी रेडियो ही एकमात्र ऐसा माध्यम होता है जो पानी के घटने या बढ़ने की जानकारी लोगों को देता और बचाव कार्य से अवगत कराता है। बाढ़ जैसी विपदा में बेघर होकर लोग रेडियो के ही सहारे अगले दिन होने वाले राहत कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं और आगे बचाव की तैयारी करते हैं। किसी विपदा में जब अन्य संचार माध्यम नष्ट हो जाते हैं, आकाशवाणी की सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहती हैं और लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। आकाशवाणी के समाचार के अलावे मनोरंजन के कार्यक्रम भी देहातों में काफी लोकप्रिय हैं। शाम को प्रसारित होने वाले समाचार लोग नियमित सुनते हैं और देश दुनिया के साथ अपने जिले जवार की घटनाओं से वाकिफ हो जाते हैं। देहातों में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना दैनिक नियम की तरह होता है, क्योंकि वह काफी जानकारी पूर्ण और उपयोगी होता है। आकाशवाणी की महत्ता आज टेलीविजन और इंटरनेट के पदार्पण के बाद भी पूर्ववत बरकरार है। खासकर देहातों में तो आकाशवाणी आज भी अपना एकाधिकार बनाए हुए है। संपन्न ग्रामीण देहातों में भी टेलीविजन रखे हुए हैं, किंतु बिजली के अभाव में वह कार्य नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में एकदम सस्ता और आसानी से उपलब्ध रेडियो ही सुदूर क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। कृषि के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के जरिए पशुपालकों और मत्स्य पालकों को दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार के जितने भी जनउपयोगी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका अग्रणी रही है। बागवानी, फूल और फल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, इसके प्रचार के लिए आकाशवाणी ने समय समय पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कर लोगों को लाभ पहुंचाया है। मिट्टी की जांच से लेकर रासायनिक खादों के खेती पर होने वाले कुप्रभाव से आकाशवाणी के कार्यक्रम किसानों को सचेत करते रहते हैं। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के उपाय पर भी आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसका लाभ किसान उठा रहे हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और किसान गांव में बसते हैं, जहां आकाशवाणी की पहुंच है। इसलिए आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, अल्पसंख्यक कल्याण, नारी सशक्तिकरण

0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी के समाचार और कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। लोक अदालत और उनसे होने वाले लाभ के अलावे समसामयिक विषयों पर वार्ता के माध्यम से महत्वपूर्ण विचार लोगों के बीच प्रसारित होते हैं। विशेषज्ञों के वार्ता और साक्षात्कार के माध्यम से भी आकाशवाणी ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित कर रही है। FM स्टेशनों के माध्यम से होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है और इसका लाभ ग्रामीण लोग अधिक उठा रहे हैं। सासाराम में भी FM चैनल का एक रेडियो स्टेशन है जिसका प्रसारण क्षेत्र रोहतास और कैमूर जिला है। इसका उद्घाटन 2 मई 1991 में हुआ था। इस स्टेशन में ध्वन्यांकन सुविधा युक्त बहुउद्देशीय स्टूडियो है और हवा में इसका प्रसारण क्षमता 55 किलोमीटर है। 3.8 एकड़ में यह स्टेशन फैला है जिसमें 292.27 वर्ग मीटर में भवन बना हुआ है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर इसके प्रसारण सुने जा सकते हैं। क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से प्रसारित इस स्टेशन के कार्यक्रम काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं और प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में श्रोताओं की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उससे पता चलता है कि इसके कार्यक्रमों का दायरा कितना विशाल है और उसका लाभ कितना बड़ा वर्ग उठा रहा है। 100 मीटर ऊंचा एंटीना वाले इस स्टेशन के कार्यक्रम गांव देहात से लेकर कैमूर पर्वत के ऊपर और जंगलों में भी सुना जाता है। भारत जैसे विकासशील और बिहार जैसे पिछड़े तथा नदियों, पहाड़ों और जंगलों से घिरे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी आकाशवाणी ही सबसे ज्यादा सशक्त माध्यम है जो बिना बाधा के अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहा है और उसे जन जन तक पहुंचाने में सक्षम है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो रेडियो से परिचित न हो। रेडियो आज किसी के लिए दुर्लभ नहीं है। यही कारण है कि उसके कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके लोकप्रिय कार्यक्रम लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। फसलों में वृद्धि और किसानों की हालत में सुधार में कृषि पर आधारित कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में आकाशवाणी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच ही कारगर है। आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार सुदूर क्षेत्रों तक होना ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने अपनी जन पक्षधरता की भूमिका का बखूबी निर्वाह भी किया है।
1: कैमूर श्रृंखला की पहाड़ियों, जंगलों के मनोरम प्राकृतिक परिवेश,
2: सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में आकाशवाणी की भूमिका, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर ददन पांडे की ये पूर्व प्रसारित वार्ता।

0: आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं साहित्यिक कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए रामियस द्विवेदी से उनका पूर्व प्रसारित ये काव्य पाठ।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है राम और रावण। राम रावण ये दोनों बलि थे, मगर एक निश्चर तो एक देवता हो गया। एक परहित को अपना बनाया धर्म,

और वह असुर था छली, लाख था वह बली, चोर बनकर सिया को चुरा ले गया। राम रघुवंशी केवल सिया के लिए, सारी दुनिया की नारी को माता कहे। और वह असुर जिस त्रिया को भी देखा भला, बस उसी के लिए वह फिदा हो गया। राम रावण को पापी समझते रहे, फिर भी अपना बनाया उसे मोक्ष दी। और राम को वह परम ब्रह्म माना, मगर दुश्मनी करके फिर भी जुदा हो गया। दुश्मनी करके फिर भी जुदा हो गया।

हो गया। एक समय राम बनकर असुर वह चला, मन में सोचा और सीता को छलने चला। विश्व की नारियां मां से दिखने लगी, वह न समझा रसिक उसको क्या हो गया। वह न समझा रसिक उसको क्या हो गया। मेरी दूसरी कविता शीर्षक है मिट्टी की धरती। के कैसे बतलाऊं क्या है बात, माजरा क्या है, जाने दो छोड़ो भी

कोई गुजरात पूछा हौले से, जनाब मुझको बता दो मेरा पता क्या है। मुझे तो इतना पता है कि आदमी हैं सभी, अब इसके आगे सिख हिंदू मुसलमान क्या है। कल तलक एक थे रोशन था यासियां अपना, सोच कर देखो भी मुंह फेर के जाना क्या है। दिल ही बांटा गया अब तक सभी बंटवारे में, धरती मिट्टी की है धरती को बांटना क्या है। हर एक घर में कभी प्यार कभी झगड़े हैं, ऐसे झगड़े को यूं बाजार में लाना क्या है। इस तरह भाई की गर्दन की खून के प्यासे तुमने सोचा कभी बेवा पे गुजरता क्या है। और अंत में, वतन है अपना चमन अपना जमाना अपना।

रसिक अब इससे बड़ा और वायदा क्या है, कैसे बतलाऊं क्या है बात, माजरा क्या है। मेरी तीसरी कविता शीर्षक है इसका सेवा धर्म, कि कहते हैं कई लोग है बेकार जिंदगी, कहते हैं कई लोग है बेकार जिंदगी, है सृष्टि का सबसे बड़ा उपहार जिंदगी, फूलों को मुस्कुराने दो छेड़ो नहीं इन्हें, फूलों को मुस्कुराने दो छेड़ो नहीं इन्हें, नाहक ही कर रहे हो गुनहगार जिंदगी, जो काम

मंजिल है बहुत दूर, समंदर के पार है, उस पार उतरने को है पतवार जिंदगी। जो लोग जानते हैं सभी लोग एक हैं, उनके लिए तो प्यार ही बस प्यार जिंदगी। औरों के दिल दुखे नहीं यह फर्ज हमारा, दुखते दिलों का करना है उपकार जिंदगी। ये अश्क पीले इनको बहाना नहीं अच्छा, रो रो के कर रहे हो क्यों बेजार जिंदगी। गम बांट ले सभी के और मुस्कान बांट दे, बतला दे यही जिंदगी का सार जिंदगी। लग जाएगी लगन जो रसिक सेवा धर्म की, लग जाएगी लगन जो रसिक सेवा धर्म की, फिर तो कहोगे मिलती बार बार जिंदगी, फिर तो कहोगे मिलती बार बार जिंदगी। मेरी अगली कविता है किराए का डेरा। हर सुबह रंगीनियां बचपन की बिखराता गया, दिवस ढल कर आखिरी पैगाम दुहराता गया। क्या पता गुलशन की कलियों के लिए फिर नया मधुमास है या पतझड़ का फेरा है। हर तरफ बाजार है, सबका अनोखा धंधा है, कोई सिर ऊंचा उठाए कोई दबता कंधा है, कोई देखे दूसरों का मुंह कोई आशा लिए, और कोई उसको देख कर चलता हुआ मुंह फेरा है। हर कोई इंसानियत से दूर होता जा रहा है, अपनी खुशियां साथ ले मगरूर होता जा रहा है। अजनबी है आज का

तेरा है। और अंत में कि इस क्षणिक बाजार का व्यापार कितना है सुहाना, झूमता है हर महाजन, सेठ है कैसा दीवाना। रसिक सब कुछ जान के अनजान बना फिरता है कि यह मकान तेरा किराए का डेरा है, यह मकान तेरा किराए का डेरा है। और अगली कविता जो एक गजल है कि

0: बात कुछ बन जाएगी, समझा करो।
1: अभी आप सुन रहे थे रमेश द्विवेदी से उनका काव्य पाठ। इसी के साथ साहित्यिक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक माधुरी। इसमें हम सुनवा रहे हैं भोजपुरी एल्बम से लोकगीत।

मदन राय के स्वर में आप सुन रहे थे ये लोकगीत। रचना थी दीप मोहम्मदाबादी की। और अब लोकमादरी कार्यक्रम के अंत में हम सुना रहे हैं इन्हीं के स्वर में ये श्रृंगार गीत।

इसी के साथ लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रसधार के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। आरंभ में लीजिए सुनिए दीपक त्रिपाठी और अनन्या सिंह की आवाजों में ये रचना, बोल है हम विदेशवा जईबे ना।

दीपक त्रिपाठी और अनन्या सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे ये रचना। रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम गीत। अब लीजिए सुनिए अभिषेक सिंह गोलू की आवाज में हरे राम डेंजर की ये रचना, मन करे जाए नदी।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: रसधार कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए विजय चौहान और शिल्पी राज की आवाजों में विजय चौहान की रचना मेरा दिल दीवाना।

रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम से गीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हम सुन रहे थे मन मस्त कबीरा एल्बम से बैजू मंगेशकर की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए, कबीर के द्वारा लिखे गए इन प्यारे से बोलों को। आइए चलते हैं, सुनते हैं अगला नगमा आज के कार्यक्रम रंग तरंग में। ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागा एल्बम से, मिर्जा डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है, सहरी भोपाली ने इसे लिखा है।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

यार का दीदार चाहिए एल्बम से रामशंकर की आवाज में असीर बुरहानपुरी ने इसे लिखा और दीपक पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, अनफॉरगेटेबल ट्रीट, आशा भोसले एल्बम से। आशा भोसले की आवाज में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार का पहला खत से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज में, जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीर हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए याद करते हैं राजकुमार

इसी लाइफ में इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत रोजनजान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, येशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में रविंद्र अवाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया है इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविन्द्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर की। हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहां है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मुशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई हेट टीयर्स, पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर कहां खत्म हुई है अभी, तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं, और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई है आपके लिए उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है, भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बच सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हों, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं, मोहब्बत, डॉन, हसीन, पैर, तारीफ, बहुत सारे शब्दों का इन्होंने जिक्र किया है। और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती है, कभी दिल भी असर होता है, कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं, इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं, मैं हूं डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर, कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहां से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा, आपकी

0: संधि आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहां कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को डॉन पकड़ में नहीं आता। और इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहां पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: कर भगे कभी कुतर भगे।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं। कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पांव बहुत हसीन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियां होती हैं, ये बात भी ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं, और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफर इसमें चल रहे हैं, और हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार न मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियां आ जाए तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने। ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी एलपीजी खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, जरूरी भी है और जरूरत से ज्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते, पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नजर से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले, तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन है। ये राजकुमार जी का, जरा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो जरूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सब इस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने किसी शिक्षक ने कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डांट को ना, कभी दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं यहाँ धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ, सफर यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोदड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सबकी शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और

हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफर चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मशाई जिंदगी पड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे है उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सके। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितने ज्यादा से ज्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, जरूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या, आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है, प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका यह हाथ।

दे दे, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा एट ईयर्स मुगे में खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है तो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंती के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने जमाने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मजा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग्स जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से। तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माई लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ मैं आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी। तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह जिंदगी पड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, जरूर बताइएगा। मैंने अभी दो दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है। उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली, मौत तो एक कविता है, मुझे मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। श्री चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग करेंगे। श्री चौधरी ने जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने डीएमसीएच में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आरा के राजकीय पालिका विद्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच मतों की गिनती की जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रथम वरीयता में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका, जिसके बाद द्वितीय वरीयता की मतों की गिनती की जा रही है। इस सीट के लिए 12 मई को मतदान हुआ था। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व एमएलसी राधाचरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है। पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैक

0: और मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल शाम 7 बजे से 7:15 तक आयोजित होगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। प्रशासन ने लोगों से मॉक ड्रिल में सहयोग की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तेल कंपनियां अब 10 लाख से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस संबंध में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के निबंधित मोबाइल पर संदेश भेजा जा रहा है। बिहार राज्य LPG वितरक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में 7 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। यदि उपभोक्ता आपत्ति नहीं जताता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मई महीने में अब तक सामान्य से 170% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के मोहम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 वर्ष पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है। अररिया सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद धुहन की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल परिसर में LED डिस्प्ले और कूलर युक्त RO लगाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। जनाब चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डा की हिफाजत सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को मुंतकिल किए जाने के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय तैयारा हादसा अथॉरिटी के अफसरान के साथ होने वाली मीटिंग में दरभंगा हवाई अड्डे को बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे की शक्ल में फरोग देने का मुतालबा करेंगे। जनाब चौधरी ने जिला के शोभन में एम्स के तामीराती काम की रफ्तार का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने DMCH में चल रहे काम की रफ्तार के पेश नज़र भी अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। बिहार कानून साज काउंसिल की भोजपुर और बक्सर मकामी अथॉरिटी सीट के लिए जिमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी है। हमारी नुमाइंदा ने बताया कि आरा के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वाक़ रायशुमारी मरकज पर सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच वोटों की गिनती जारी है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक पहले मरहला में किसी भी उम्मीदवार को वाजह अक्सरियत नहीं मिल सकी, जिसके बाद दूसरे मरहला के वोटों की गिनती की जा रही है। इस सीट के लिए 12 मई को वोटिंग हुई थी। गौरतलब है कि यह सीट साबिक रुकन कानून साज काउंसिल राधा चरण साह के कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद खाली हुई है। पटना

अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिलों में आज शहरी हिफाजती मशक के तहत ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का इनाकाद किया जाएगा। मॉक ड्रिल शाम 7 बजे से 7:15 तक होगा। इस दौरान इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी प्राइवेट लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इंतजामिया ने लोगों से मॉक ड्रिल में तावुन की अपील की है। तेल कंपनियां रियासत में अब 10 लाख से ज्यादा आमदनी वाले सार्फिन को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस सिलसिले में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की जानिब से सार्फिन के रजिस्टर्ड मोबाइल पर यह पैगाम भेजा जा रहा है। बिहार रियासती LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक तेल कंपनियों की जानिब से भेजे जा रहे पैगाम में 7 दिनों के अंदर रद्द अमल मांगा गया है। अगर कोई सारिफ एतराज नहीं करता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने बैन अल-अक्वामी उड़ानों की तादाद में कमी करने का फैसला किया है। इसके लिए बैन अल-अक्वामी रास्तों पर कुछ खिदमात गैर मुअय्यना तौर पर रोक दी गई है। ये फैसला फजाई हदूद कंट्रोल और हवाई ईंधन के ऊंची कीमतों को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस साल जून से अगस्त तक के लिए होगी। महकमे मौसमियात ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मई माह में रियासत में अब तक मामूल से 170% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मशरिकी चंपारण जिला के छतौनी थाना हलका के बरियारपुर से जिला इंटेलिजेंस यूनिट और एसटीएफ की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 असलाह स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिला के मोहम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का इंकशाफ किया है। मौके से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। शेखपुरा जिला के चेवारा थाना हलका से पुलिस ने जन स्वराज पार्टी के जिला सदर मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है। अररिया सदर अस्पताल में शहरी सहूलतों को तौसी दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन की सदारत में मरीज फलाह कमेटी की मीटिंग में अस्पताल कैंपस में LED डिस्प्ले और कूलर वाले RO लगाने समेत कई दीगर तजावीज को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेडमैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है।

उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.crpf.gov.in। जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स अथवा 2 या 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है 14 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता है www.ssc.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के कुल 731 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित है। ग्रुप डी के लिए 27 वर्ष निर्धारित की गई है और ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। वेबसाइट का पता है www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर

0: को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ YIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनपिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनपिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफी गीता दत्त की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं 3 विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से, गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दाव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: ヘビ。
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा। आपको भी दीपा।

0: प्यार भरा नमस्कार।
1: चंचल, आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
0: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए।
1: भाई, एक बार जब भी आते हैं ना, तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना।
0: हाँ,
1: सेहत का ख्याल है या नहीं।
0: इसीलिए भाई, दीपा जी जब भी आएंगी ना, वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
1: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
0: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
1: स्वास्थ्य का ख्याल रखना, देखो ना, इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
0: हाँ,
1: है ना।
0: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लेकर बताएंगे।
1: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो, आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
0: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें, ये बताओ।
1: देखो, मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
0: देखो,
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, साधारण नहीं।
0: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है, उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
1: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
0: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे। हाँ, कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियां सा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो, दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है, जहां पर हम KG1 KG2 के जब पढ़ते थे, बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
0: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं।
1: हाँ,
0: बस
1: हाँ।
0: अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो है।
0: जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
1: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहां, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं या कहीं और किस

0: किसी अन्य शहर में चले गए हैं या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरीबाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौल, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी तो पड़ोस के ही गाँव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आस पास के गाँव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों कि चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ,
0: पति के साथ वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: ये उनको कहा तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
0: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती है कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरीबाई का ये मानना

0: हैं कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए। आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली न होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं। और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए, अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद्द हो गई, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, छीछी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

का जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही है कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है।

0: जहां बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सुना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सुना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सुनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना की कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं है क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते।

0: हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है, तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है, जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है, इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए। और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं, तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है, तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे। लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
0: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है, जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है, तो किश्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है, तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती है ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए, तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है। और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको रखनी
0: होनी चाहिए,
1: या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2000 या 3000 की किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2000 या 3000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है, बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हजार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हजार तक पे चली।
1: और वो जो 20 हजार की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30 हजार या 35 हजार तक की वो पड़ जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं, तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी रुक जाता है।
0: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या है, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान है। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, GST कहां लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किश्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
1: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है, जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
0: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप EMI के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम

0: 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात
0: है। ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के

0: कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना, उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं, जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार बदबूदार गंध में बदल देते हैं। शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र,

0: जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे, नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं, और एक बार कपड़े जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई है कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहां जो प्रभावी हिस्सा है जहां दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में वहां रगड़कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, नीम के पत्ते हैं उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओ नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुने यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना आप, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: फूल लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं, जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त

0: सकते हैं।
1: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
0: जी जी जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है 2 मिनट का मौन। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें, आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें प्रेम जी। तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
0: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
1: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
0: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: से मैम, मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
1: जमील भाई नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हालचाल है?
1: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
0: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
1: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
0: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
1: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
0: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
1: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
0: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
1: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
0: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
1: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
0: टीम का नाम है महबूब तुम्हेदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैं मैम थोड़ा से गुनगुना देना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल गुनगुनाइए।
0: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर, उत्तर

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश, छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, वो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी के आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या बारह महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जाति?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हालचाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास ही है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा?
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस दो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफ अली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपकी मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारतीय का सुनने वाला हूँ मैम। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो इतना जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, बीच फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी स्वाद चखते हैं मैम। एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं, अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अली तो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो आप? सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी,
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सैटेलाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं, खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते, आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से जिलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है राजस्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हालचाल हैं, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, ज्योत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर 2 सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।

0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो बंद है।
0: हाँ, तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं, दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है।

0: गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: किरण वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो,
0: काल जयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं, अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला विंगो

0: लेकर का विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं एहसासों से भी बनते हैं, तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत, आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले दो जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने

0: बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जल डमरू आदि खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए रखने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे सबसे पहले भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन 5:10 पर और 5:30 पर हम आपके लिए पेश करेंगे। युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी

संध्या 6 बजे प्रसारित आज के किसान वाणी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा डॉक्टर अवधेश कुमार से डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी की बातचीत। विषय होगा वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं। अलावा इसके आप सुनेंगे मिल्की मशरूम की खेती पर चर्चा। आप सुनते हैं भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत संध्या 6:30 पर 7:50 पर ई मन पसंद के तहत आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमे और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

सात बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान, और 7:15 पर सुनिएगा हमारा दैनिक प्रसारण सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:30 पर, और जिले की हलचल सुनिएगा 7:45 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या आप सुनते हैं रात्रि 8:45 पर, और रात्रि 9 बजे हम आपके लिए पेश करेंगे लोक

गीतों का कार्यक्रम लोकधारा सुनना नहीं भूलिएगा। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर। सुनिएगा विविध भारती मुंबई से प्रसारित आज के फनकार। रात्रि 10:00 हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का आनंद लीजिएगा रस रंग के तहत। सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों के साथ।

तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन में अनूप जलोटा की गाई यह भक्ति रचना।

भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण। वनवास समाप्त करके वापस आए और भरत को वनवास कथा सुना रहे हैं कि देखो भरत, हमारे साथ क्या क्या हुआ। रावण वध भी हुआ और ये कौन कौन से लोग जिन्होंने हमारी सहायता करी, उसमें सबसे परिचय कराया। और जब प्रभु ने परिचय कराया हनुमान जी का, तो नेत्र भराए प्रभु के और बोले, भरत, ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं, उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उनसे कभी उऋण नहीं हो सकते। भरत भाई, कपि से उऋण हम नहीं हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी आपने संदेश के पहले अनूप जलोटा के स्वर में भक्ति रचना सुनी और अब आइए सुनते हैं ललित मुनशाओ की आवाज में ये भक्ति रचना।

ललित मुनशाव से अभी आप महालक्ष्मी मंत्र सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवा वाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। मौसम की यदि बात हम कर लें तो कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई दिन बहुत कड़ा हुआ, लेकिन शाम को कभी कभी जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी और बवंडर सा कुछ होता है और कहीं बूंदाबूंदी हो जाए तो अजीब सा महसूस होता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसा मौसम है, आने वाला कल कैसे मौसम वाला होगा। ये तमाम चीजें दिमाग में तैरती हैं क्योंकि हम सभी पारिवारिक लोग हैं, परिवार में रहने वाले लोग हैं और भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चे, इतना ही नहीं अपने साथ जो घर में जानवर हैं, गौ माता हैं, भैंस, बैल, बछड़े या अन्य भी खलिहान में या रोजगार में या खेल के मैदान में। भाई हम युवा हैं तो फिर वहीं रहेंगे ना, खेल के मैदान में होंगे या कार्यालय में होंगे या ऑफिस में होंगे, कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, यही तो होगा ना। तो जहां कहीं भी हम रहें अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और बचाव करें अपने आप का, क्योंकि मौसम बदलते देर नहीं लगती है। और यदि आप कहीं जा रहे हो, हाँ शादी ब्याह का भी समय है, तो ऐसे समय में तो और भी केयरफुलनेस चाहिए, सावधानी, चौकसी जिसको बोलते हैं। यदि आप बाइक से जा रहे हों और तेज हवाएं चलने लगे, आंधी आ जाए, तो श्रेयस्कर यही है कि आप कहीं रुक जाएं किसी सुरक्षित स्थान पर कुछ देर के लिए, जब तक कि माहौल शांत नहीं होता हवाओं का, आप रुक जाएं। कार से जा रहे हैं तब भी ऐसा ही करें, क्योंकि पेड़, आजकल पेड़ भी गिरने की खबरें मिलती हैं, तरह तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं, कहीं ऊपर का छप्पर ही उड़ गया, घटनाएं दुर्घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं, खबरों में हैं, तो उनसे हम लोगों को सबक लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम याद रखें कि हमारी सेहत जो है, हमारा स्वास्थ्य, वो सबसे बड़ा दौलत है, इससे बड़ी दौलत और कुछ है ही नहीं। अरे भाई, हमारे पास सब कुछ हो और हम बीमार हो जाएं, क्या सब कुछ होकर करेगा। कुछ नहीं हो और हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। तो इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल एकदम करिए, खेलिए कूदिए भी, गाइए बजाइए भी, पढ़िए लिखिए भी, सब काम करिए, लेकिन हाँ इतना जरूर

ध्यान रखिए कि मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखिए। गर्मी का मौसम है तो क्या खाना पीना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, क्या नहीं खाना है, क्या नुकसान कर जाएगा, इन चीजों की तो भाई भली भांति जानकारी होनी चाहिए हर व्यक्ति को। हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आइए एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सुन लेते हैं एक नगमा।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी हाँ, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जानकारी रखनी भी जरूरी है और सतर्कता भी जरूरी है, वो चाहे जीवन का जो भी क्षेत्र हो। चलिए हम आप बात कर लेते हैं अब परिवार सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कल यानी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाना है और परिवार की बेहतरी के लिए हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में। एक समय था जब संयुक्त परिवारों का दौर था, परिवार संयुक्त ही थे, एकाकी होना आश्चर्य था। हमने भी देखा है, हम लोग उसी परिवार से निकले पड़े हैं, 5 भाई 7 भाइयों का परिवार, एक साथ सबका भोजन, एक साथ सबको प्रार्थना में उपासना में सम्मिलित होना, एक साथ खेत पर जाना, एक साथ हर काम करना, जो नौकरी में है वो नौकरी कर रहे हैं, खेती में जो लगे हैं, बाल बच्चे सभी एक साथ, क्योंकि वही कर्म वही धर्म है, तो उसमें बड़ी निश्चिंतता रहती थी। और कहते हैं ना कि जोखिमों का सामूहिक वहन। अब आप देखिए ना, एकाकी परिवार ठीक है, लोग सोचते हैं कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, मुझे ये लगता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, समस्याओं का अंबार है। और आप सहमत भी हो जाइएगा, यदि आप एकाकी परिवार में जी रहे हो, छोटा परिवार बस 2 लोगों का है, कहते तो बड़ी अच्छा लगता है सुनने में कि भाई कुछ नहीं करना है, हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है, चलिए अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगा। लेकिन आप जरा विचार करिए कि अगर कहीं कोई व्यक्ति बीमार हो जाए गंभीर रूप से, तो 3 ही है ना, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा। लेकिन हाँ, जब परिवार संयुक्त है तो वहां पर 3 ही नहीं है, 13 है, 23 है, 33 है, 43 है, 5 आदमी 7 आदमी लिपट जाएंगे उनकी सेवा के लिए। कोई ले जाएगा डॉक्टर के यहां, कोई जिम्मेवारी पूर्वक दवाइयां देगा, कोई उनके सेवा में शुश्रूषा में लग जाएगा, तो इससे तेजी से आप देखेंगे कि स्पीडी रिकवरी जिसको बोलते हैं ना, तेजी से स्वास्थ्य का सामान्य होना इसका सुनिश्चय हो जाया करता था। लेकिन आज बदलते परिवेश में पता नहीं क्या हुआ, कैसी सोच आ गई, ये एक बड़े बहस का विषय है, लेकिन ये बढ़िया बात नहीं है। हम यदि संयुक्त परिवार में आज भी हैं तो समझिए कि एकदम निश्चिंत हैं, सुरक्षित हैं। अकेले हैं तो भाई अब देखिए, बात हम लोग कर ही रहे थे अभी, तो परिवार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। परिवार संयुक्त कौन सा है जिसमें दादा दादी हों, चाचा चाची हों, माता पिता हों, भाई बहन हों, सभी हों, मौसी बुआ जो बाहर हैं, जिनकी शादियां दूर गांवों में हुई हैं, उनकी भी खोज खबर तो होनी चाहिए ना भाई, लेने वाला कोई चाहिए ना खोज खबर, उनकी शादियां हैं तो उनको बुलाया जाए,

छठ पर्व जैसा आयोजन है तो उनको बुलाया जाए, ये हम लोगों ने देखा किया है। लेकिन अब ये दौर थम रहा है, जो कि चिंता की बात है। ये दौर थमना नहीं चाहिए। यदि बाहर में बुआ है, मौसी है, तो उनकी फिक्र यहां होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि हम मैं अपने घर जा रही हूं, ऐसा नहीं कि वहां मेहमान की तरह। जी हाँ, ये चीजें हैं जिसके लिए ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े परिवार के प्रति और परिवार के सदस्यों का आदर, परिवार के सदस्यों की आज्ञा। परिवार के सदस्य बुजुर्ग हैं लेकिन वो अनुभव के खान होते हैं, अनुभवों से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हर तरह की परेशानियां, परिस्थितियां को देखा है। गाढ़ संकेत जिसको बोलते हैं ना, वो गाढ़ संकेत भी देखा है उन्होंने, और बहुत हर्ष और प्रफुल्लित वातावरण का भी आस्वादन किया है। तो अपनी पीढ़ियों को वो अपने अनुभवों से लाभान्वित कराने की कोशिश करते हैं, तो उनका लाभ मिलना चाहिए। ये तभी होगा जब हम उनके साथ रहेंगे। और कहा भी जाता है श्रोताओं, दोस्तों, मित्रों, कि जिस परिवार में बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हों, मुस्कुराते हुए दिखें, मान लीजिए कि वो परिवार सही चल रहा है। एक बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है कि बुजुर्ग हैं और वो हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका, उनकी सेवा है, उनकी अहमियत है, उनका मान सम्मान है। और यही तो होना चाहिए परिवार में। बारी बारी से सभी बुजुर्ग होते हैं, सभी बुढ़ापा को प्राप्त होते हैं। कभी आज जो जवान है वो आने वाले कल को तो भाई उस अवस्था को प्राप्त होना ही है। तो चलिए ठीक है, ये एक शाश्वत सत्य है, प्रकृति का नियम है। तो अभी से ही इसकी आदत, अभी से ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आने वाला कल मुस्कुराता हुआ हो हर किसी के लिए, हर छोटे बड़े बुजुर्ग या जो भी हैं उनके लिए आने वाला कल मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। तो ये एक बात है मित्रों की, अंतर्राष्ट्रीय परिवार जो है उसके लिए हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि परिवार कैसे चले। कुछ सहना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है परिवार की बेहतरी के लिए। जो परिवार का मुखिया होता है वो सबकी सह जाता है, अटपटे होने के बाद भी वो मुस्कुराते हुए चलता है कि भाई चलो ठीक है, चलो अपने ही सारे लोग हैं। तो इस भावना से यदि सब लोग काम करें, एक दूसरे को सहयोग करें, तो परिवारें चलेंगी, परिवारें टूटेंगी नहीं, परिवारें बिखरेंगी नहीं। और संयुक्त परिवार से ही समाज को मजबूती मिलती है, समाज को बल मिलता है, राष्ट्र मजबूत होता है, क्योंकि व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है समाज की, उसके बाद परिवार की ही बारी आती है। परिवार यदि संगठित होता है तो आप पक्का मानकर चलिए कि समाज मजबूत है। लेकिन अगर हम लोग बिखर जाएंगे, वही कई ढंग से विद्वानों ने लिखा है इस चीज को कि झाड़ू अगर तिनके तिनके में बिखर जाए तो झाड़ू कहाँ है, लेकिन एक साथ है तो वो काम करने लायक होता है। तो इसीलिए मित्रों, एक साथ मिलजुल करके हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, इसी में भला है और आने वाला कल भी सुरक्षित रहेगा।

तो अभी हमने गीत का आनंद लिया और चलिए हम अपनी टॉपिक की ओर लौट आते हैं, नशे से दूरी रखें। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा संदेश ले लेते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी
2: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो संदेशों के बाद में एक बार फिर से अपनी विंदु की ओर लौटते हैं। नशे से दूरी रखें। जी हाँ, नशा चाहे जो भी हो, नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा अहितकर ही होता है। तो वो चाहे जिस भी किस

का नशा कोई कर रहा हो उसे दूर रहनी चाहिए। और युवाओं को तो नशे से बिल्कुल ही परहेज करनी चाहिए। युवावस्था ऊर्जावान अवस्था को कहते हैं। सपने बहुत सारे हैं जिसको पूरे करने हैं, पढ़ाई लिखाई करनी है, खेलना कूदना है, तो नशा फिर कहाँ से आ गया बीच में। तो इसलिए जितनी भी नशे की लत है, लत वाले लोग हैं, उनसे दूरी बनाइए और नशा से रहिए दूर। क्योंकि कहा गया ना कि नशे का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार, तो घर परिवार तो उजड़ता ही उजड़ता है, यहां तो अपना स्वास्थ्य ही पहले तहस नहस हो जाएगा, जिसकी बड़ी जरूरत है जिसके रक्षा की। तो ये एक चीज है। और दूसरी बात यह है कि फायर फाइटर बनकर जीवन की रक्षा करें, यानी इस भी क्षेत्र में, फायर फाइटिंग के क्षेत्र में कैरियर है। हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक और छोटा सा नगमा सुन लेते हैं।

तो गीत अभी आपने सुना, और फायर फाइटिंग के क्षेत्र में भी करियर की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए एक साहसी और सम्मानजनक करियर मिल जाता है, जिसमें आग बुझाने, लोगों की जान बचाने यानी सेवा और सुरक्षा प्रबंधन का काम मिलता है। और इसके लिए 10वीं 12वीं के बाद फायरमैन यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में इसके लिए बेहतरीन अवसर हैं। 10वीं 12वीं विज्ञान स्ट्रीम को प्राथमिकता दी जाती है। शारीरिक रूप से फिट होना अनिवार्य है, यानी लंबाई, सीना और सहन शक्ति, इसकी जांच तो होती ही होती है। कोर्स सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग आप कर लें, या डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कर लें, या BSc या BTech फायर इंजीनियरिंग कर लें, और फायरमैन, फायर ऑफिसर, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर और फायर सेफ्टी सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर के रूप में इसमें काम मिल सकता है। तो चलिए चलते चलते एक और नगमा सुन लेते हैं।

दो श्रोताओं नेहा कक्कड़ और साथियों को आप सुन रहे थे इस गीत में, और इसी गीत के साथ ही आज के युवाणी कार्यक्रम से हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुन रहे थे युवावाणी एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रसारण किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: नमस्कार श्रोता भाई बहन, आप सुन रहल बानी आपके मनपसंद कार्यक्रम किसानवाणी, और हम आपके साथ बानी सुज्ञा बहन और हमरा साथ बानी सुमन भाई। सुमन भाई नमस्कार।
1: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम। सुज्ञा बहन रो के नमस्कार।
0: देखिए सुमन भाई, आज हमनी के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जोन बा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ए विषय पर बात कल जाये। सुमन भाई, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, आंधी तूफान और बिजली गिरना कभी भी आ सकता। ए आपदा के पूरी तरह रोकल नहीं के जा सकत, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से एकरा नुकसान के काफी हद तक कम कल जा सकता। और आपदा प्रबंधन के कुछ उद्देश्य भी बा। सबसे पहले हमने के बात कल जाओ बाढ़ के। बरसात के दिन में नदी के किनारे और निचला इलाका में रहे वाला लोग के विशेष सावधानी रखे के चाही। मौसम विभाग के चेतावनी पर ध्यान देवे के चाही। जरूरी कागजात, दवाई, सुई, सूखा भोजन और पिए के पानी सुरक्षित रखी। बिजली के उपकरण के ऊंचाई पर रखी और तेज बहाव में बहे वाला पानी में जाए से बची।
1: देखिये सुगिया बहन, आज दो तीन दिन से
0: जी
1: पूरा सप्ताह है कहीं रह रह के जोन आवत आया आंधी,
0: मौसम चेंज हो जाता।
1: मौसम तो बदलते बा, बड़ा तेज काल है। पहले ही नौहट्टा, अधौरा, रोहतास धैले इतना तेज आंधी रहे रात के,
0: लगत रहे कि पूरा छत के छत उखड़ के फेंका जाए।
1: और कितना पहले पेड़ कवर गई, पहले जोन पोल रहे बिजली के वो ध्वस्त हो गई। ओकरा दो तीन दिन पहले है ना दिनारा, विक्रमगंज, मोहनिया धैले पूरा लाइन उन्ने बहुत तेज आई रहे। तो एकरा से का होता ना कि आदमी एघरी गर्मी के दिन बा छत पर बहरी सूता तड़ा एकाएक आ जाता, आंधी पानी जब आवे लगा था तो कई लोग
0: भागे के भी समय नहीं के दे तो, और इतना तेज आंधी आवे लगा था कि आंख में भी पड़े लगा था, तो भागे में भी आदमी के परेशानी होता। तो
1: देखी पहले जो भाग था संभल के भागे के चाहिए, ऐसे की छत से गिरे के संख्या बहुत अधिक बढ़ गई बा कि छत पर से आ गया आंधी पानी और उतरे में गिर गई।

0: हमनी के जतना पहले सावधानी अगर ना बरतल जाई तब नुकसान होई।
1: देखिए कई बार ऐसा भी होला सुमन भाई कि जब बिजली चमके लगेला या पानी आवे के संभावना दिखे लगेला तो आदमी पेड़ के नीचे छुप जालन। तो ई तो सबसे पहले हमने के सावधानी में रखे के मतलब ध्यान में खुद के भी ध्यान में रखे के बा और हर किसी के ध्यान में डाले के बा कि जब पानी आवे तब पेड़ के नीचे कभी खड़ा ना होके के चाहिए। ऐसे कि यदि आकाशीय बिजली गिरेला तो उस हरा पेड़ पर ज्यादा
0: देखिए वही जा से ओकरा अर्थिंग मिलेला ऐसे वो गिरेला वही जा और हमने के सावधानी ये बरते के बाद कोई सुरक्षित जगह पर चल जाए के चाहिए। पेड़ कब सुरक्षित जगह ना हो
1: ना हा। और एक साथ हमने के ये भी ध्यान रखे के चाहिए कि अपन मोबाइल फोन के बंद कर दी कम से कम नेट जो हमने के ऑन कर नेट तो जरूर ऑफ कर देवे के चाहिए।
0: तो ओकरा से भी देखिए लाभ ही हुई कि जो अपना और जो बिजली के बात वो खींची ना तो ऐसे कुल सावधानी बरत के हमने के पहले आप प्राकृतिक आपदा के कम कर जा सकेला। और देखिए कैसा हमने के जानते हैं कि कितना घर जे आदमी रहता बहुत सा जर्जर स्थिति में बा कोई के मिट्टी के बा तेज आंधी में वो गिरे के डर बा तो हमने के वहीजा से भी निकल के सुरक्षित जगह पर चल जाए के चाहिए। माल मवेशी के भी सुरक्षित जगह पर बांधे के चाहिए। बूढ़ पुरानिया बच्चा जे भी बा ओकरा के किनारे कर देवे के चाहिए।
1: देखिए गांव मोहल्ला में जानकारी जागरूकता फैलावे के चाहिए। बच्चा और बुजुर्ग के सुरक्षा के उपाय के जानकारी भी देवे के चाहिए। आपातकालीन फोन नंबर हमेशा अपना पास रखी। प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की जानकारी भी हर व्यक्ति के होके के चाहिए। तो याद रखल जाओ कि सतर्कता और तैयारी ही आपदा से बचाव के सबसे बड़मुख हथियार है।
0: और देखिए तो हमने के अभी आंधी पानी के बात की नहीं है जा
1: जी।
0: ये घड़ी तेज आंधी में आग लगे के भी संभावना
1: बहुत ज्यादा होला।
0: आग लगे के घटना भी बढ़ रहा बा तो हमने के ये चाहिए कि आग से बचाव करे खातिर जहां तहां चिंगारी ना फेंके के चाहिए। और अग्निशमन विभाग एकरा खातिर बहुत सतर्क बा हर जगह प्रशिक्षण भी दे रहा बा जगह जगह जागरूकता अभियान चलावल जा रहा।
1: देखिए सुमन भाई ये अग्निशमन विभाग तो बाद में पहुंची लेकिन पहले हमने के आपन मतलब दायित्व निभावे के चाहिए। जैसन की रउआ कहनी है बहुत अच्छा बात कहनी है कि जहां तहां हमने के चिंगारी ना फेंके के चाहिए। चिंगारी से ही आग लगेता
0: चिंगारी से लगता बिजली के तार टकराता वो गिर जाता बहुत से आग लग जाता तो हमनी के ऐसे बचाव करे खातिर जरूरी बा कि नंगा तार एक मन सटल मत होके ओकरा के थोड़ा सा बांध के रखे के चाहिए या कोशिश कर जाए कि जहां हमनी के जो सर सामान बा या
1: ओकरा के ढक दी जाए
0: ओकरा के कवर तार लेके जाए के चाहिए। नंगा तार कबो ना रखे के चाहिए तो उसे का हुई कि कम से कम बिजली से आग लगे की संभावना ना रही। और हमने के अगर मान ली कि अग्निशमन आग अगर लगिए गई तो जल के व्यवस्था जरूर करे के चाहिए। पानी के व्यवस्था रही तबे पहले आग पर काबू
1: पावल जा सकता
0: तो ऐसे इतना हमने के जरूर व्यवस्था करे के चाहिए कि भाई तुरंत आदमी मोटर पंप जौन भी बा। देखिए जब आग लग जाला कबो कबो तो यो होकेला कि बिजली खत्म हो जाला आंधी पानी आते बिजली बंद हो जाता
1: कट जाता
0: घरे घर अब मोटर पंप बा चापा कल बहुत कम जगह पर चल बा
1: जी जी
0: कुआं खत्मे बा तब वो घड़ी पानी के बड़ समस्या हो जाता। तो हमने के यह चीज के भी ध्यान रखे के चाहिए कि भाई ये घड़ी मौसम जोन बा आंधी पानी आवता बिजली कट जाई आग लगे खतरा बा तो दो चार दस बाल्टी पानी के व्यवस्था घर में रखे के
1: घर में रखे के चाहिए। चाहे हमने के श्रोता भाई बहन के हमेशा बताई ले जा कि ताल पोखर में जोन बरसात के पानी बा ओकरा के इकट्ठा करके रखी।
0: और देखिए समय समय पर हमने के अपना मौसम पूर्वानुमान भी बतावे नहीं जा कि का पहले मौसम के हालचाल रही का मिजाज रही तो ओकरा पर भी ध्यान देवे के चाहिए और वो हम सारा अपन तैयारी भी करे के चाहिए। तो देखिए आज हमने के का कार्यक्रम में सुनावल जाए यह पर भी थोड़ा चर्चा कर लिया।
1: देखिए आज के हमने के अपना कार्यक्रम में बा आज के खबर अभी से जो उनकी तुरंत हमने के बात जान ली आज की बातें में के अंतर्गत लेवे वाला जानकारी के विषय हुई वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए भेंट वार्ता बा एकर वार्ताकार बनी डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा और भेंट करता बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। नई उम्र की नई फसल में आज चर्चा के विषय हुई मिल्की मशरूम की खेती और आज की नसीहत में खेती के साथ रोजगार भी है जरूरी ए विषय पर चर्चा के लिए साथ ही मौसम पूर्वानुमान के जानकारी भी लिहल जाए और कुछ संदेश भी सुनल जाए। लेकिन अभी समय बा कि कुछ समाचार सुनल जाओ तो रउआ काका संदेश लेके बैठल बानी बताइए।
0: देखिए श्रोता भाई बहन हमने का

0: ये क्षेत्र बार रोहतास कैमूर के जिला
1: जी
0: जोन बा भोजपुर पुरनका साहाबाद जूना के कहल जला। ई जोन क्षेत्र है तुम धान के कटोरा कहल जला।
1: कटोरा जी
0: धान के सर्वाधिक उत्पादन हिजा होला खासकर रोहतास जिला में, और एकर श्रेय जला सोन नहरन के
1: जी।
0: सोन नहर जब से आयल तब से ही
1: धान के कटोरा बन गई।
0: हाँ, तब से धान के कटोरा बन गई। तो इनका पारी सरकार जोन बा सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेला
1: जी।
0: और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे के पीछे कारण होखेला कि एकरा से कम मूल्य ना मिले के चाहे, ये न्यूनतम है। एकरा से अधिक से
1: ज्यादा
0: अधिक,
1: मिल ज्यादा से ज्यादा मिल जाए लेकिन एकरा से कम ना मिले,
0: बाजार में अधिक रहोगे
1: जी,
0: लेकिन एकरा से कम ना होके। अगर एकरा से कम होता तो किसान भाई लोग के नुकसान
1: हुई।
0: लेकिन अब हमनी के जो सोच बा यही जाके और जो स्थिति बा वही बाकी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए बहुत बड़ बा, ओकरे के हमनी के अधिकतम मान लेले बढ़िया, उतना भी मिले के आशा कम हो जाला। तो यह साल सरकार 72 रुपया प्रति क्विंटल धान पर दाम बढ़ा देले बा, और पहले जो 2369 रुपया प्रति क्विंटल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य रहे जो ना के पैक्स खरीदत रहे किसान भाई लोग से, अब वो 2441 रुपया प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदल जाए किसान भाई के। ये साधारण धान के हाँ, अगर हमनी के ग्रेड ए के धान लेके जाता नहीं जा तो पहले ओकर दाम रहे 2389 रुपया प्रति क्विंटल, अब एकरा के बढ़ा के यहू में 72 रुपया के वृद्धि कर ली बा, अब 2461 रुपया प्रति क्विंटल हो गई बा। एकरा अलावा देखी राज्य में जो सबसे अधिक धान के अधिप्राप्ति रोहतास जिला में और कैमूर जिला में होला, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े से किसान भाई लोग में काफी लाभ भी हुई, क्योंकि एजा कई एक लाख मीट्रिक टन क्विंटल के हिसाब से धान बिकल
1: जी, जी।
0: कम से कम माने समझे कि 30 से 40 लाख क्विंटल से अधिक धान के बिक्री खाली रोहतास जिला में होला। तो एकरा अलावा देखिन धान के अलावा ज्वार बाजरा रागी मक्का अरहर मूंग उड़द मूंगफली सूरजमुखी सोयाबीन तिल नाइजर सीड कपास के भी समर्थन मूल्य बढ़ावल गई बा
1: जी।
0: और सबसे अधिक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो ना फसल के बढ़ल बा वह सूरजमुखी के
1: जी।
0: सूरजमुखी के 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ावल गई बा। एकरा अलावा कपास पर 557 रुपया नाइजर सीड पर 515 रुपया तिल पर 500 रुपया अरहर पर 450 रुपया उड़द पर 400 रुपया सोयाबीन पर 380 रुपया ज्वार पर 324 रुपया रागी पर 319 रुपया मूंगफली पर 254 रुपया बाजरा पर 125 रुपया प्रति क्विंटल के वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार की लेवा। और इस सब जो दाम जो लागू हुई तो हमने के खरीफ वर्ष 2026-27 जब आई तो एक से ही शुरू हो जाए
1: जी। बहुत अच्छा बात बताइनी सुमन भाई। अब हमनी के एक जानकारी लिया जाओ, आज की बातें एक अंतर्गत जानकारी के विषय पर वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए, एक वार्ताकार बनी डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा और बता रहल भेंट करता बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। तो सुने के ये वार्ता
0: आइए हम लोग के भेंट वार्ता आइए तो सुनल जाओ दोनों जाने का।
2: किसान भाइयों, हम वनवासी कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा में हैं और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इनके गौशाले में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, और यहाँ पर हमारी भेंट हो रही है अवधेश कुमार शर्मा जी से जो एक कृषि वैज्ञानिक हैं। तो शर्मा जी, आप ये बताइए कि ये शुरुआत कैसे की जाती है वर्मी कंपोस्ट की?
3: जी, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ की खाद, केचुआ की खाद इसे अंग्रेजी में वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो केचुआ की खाद किसान जानते ही हैं पूर्व से कि केचुआ मित्र रहे हैं खेतों के लिए, किसानों के लिए मित्र कहे जाते रहे हैं। तो अब खेतों से किसान केचुआ विलुप्त होते जा रहे हैं रासायनिक दवाओं के प्रयोग से और उर्वरकों के प्रयोग से, तो यह मित्र रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी केचुआ रहे हैं अभी। तो उनके द्वारा उनसे उनकी सहायता से जो हम खाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आज एक बनाने की प्रणाली विकसित की गई है जिसे वर्मी कंपोस्ट

0: हम कह रहे हैं कि वह जो है गोबर और जो कार्बनिक पदार्थ खरपतवार के रूप में जो होता है उन उसमें जो है केचुए का जो पालन करते हैं, केचुए अपने अपघटित करते हैं इन वनस्पतिक पदार्थों को, अपघटित करके खा के उसे पचा के फिर बहुत अच्छे खाद के रूप में जो है उसे परिणित कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, जो कि हमारे जो है सामान्य जो गोबर और कंपोस्ट की खाद होती है इससे 4 से 6 गुना जो है उसमें पोषक तत्व और कई तरह के हार्मोन्स सब कुछ उसमें जो है मिल जाते हैं वर्मी कंपोस्ट से।
1: जी, तो यह केचुआ जो है जो हम लोग देखते हैं देहातों में जो बरसात होने के बाद जो रहता है वो होता है या ये दूसरा केचुआ है?
0: जी नहीं, यह दूसरी केचुए हैं, इनकी प्रजाति है, इसका नाम है एसिनिया फेटिडा। यह जो है यह प्रजाति हमारे देश में प्रदेशों में यह केचुआ खाद के लिए जो है काफ़ी, यह अपनी वृद्धि, ऐसे हमें केचुए चाहिए जो बड़ी तेज़ी से अपने वंश की वृद्धि कर सके, संख्या बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें शक्ति हो कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने की। मेरा तो उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा जब इसे वर्मी कल्चर से या इसे केचुआ का खाद तैयार करते तो ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद तैयार करें। तो ऐसी दशा में एसिनिया फेटिडा जो है अपघटित करने की क्षमता काफ़ी रखता है।
1: जी अच्छा, अब ये बताइए कि इसको लाया कहाँ से जाएगा?
0: जी इसे हम भी, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी जो है देता है, किसान भाई अगर चाहें तो पूर्व सूचित करके यहाँ आके जो है केचुआ ले जा सकते हैं।
1: जी
0: और आप ऐसे दूसरे जगहों से, कई जगह से जो है अच्छे किसान भी इसे जो है आज एक व्यवसाय के रूप में वर्मी कल्चर को केचुआ उत्पादन कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप उचित सोर्स जो है नज़दीकी जो सोर्स है पता करके उनसे भी ले आ सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालयों से ले आ सकते हैं, और अच्छे किसान भी जो प्रगतिशील किसान हैं वह भी तैयार कर रहे हैं।
1: अच्छा ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? गोबर ले आ करके इसके लिए कुछ टैंक वगैरह भी बनाने की देख रहे हैं जैसा कि है वो व्यवस्था करनी पड़ती है?
0: जी हाँ, इसे जो है एक पक्के टैंक में ही जो है बनाना अच्छा होता है। 5 इंच जो है दीवार वाली जो है सीमेंटेड टंकी बना लें जिसकी गहराई 3 फीट हो, और आप लंबाई अपने सुविधा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जो कि 10 फीट लंबी हो सकती है, 15 फीट लंबी हो सकती है, और अपन नीचे का फर्श पक्का होना चाहिए।
1: ऊपर देख रहे हैं कि छत आप डाले
0: जी हुए। हाँ, तो यह जो है केचुआ के लिए जो है गर्मी और धूप बरसात से बचने के लिए टैंक बनाते हैं, तो इसे जो है इसमें पानी का प्रवेश ना हो, छायेदार जगह में इसे जो है बनानी चाहिए, छायेदार जगह में भी बनानी चाहिए, उचित तो यही होगा, और इस पे छाया होना चाहिए आप
1: जी, ताकि पानी वगैरह ना पड़े।
0: जी पानी वगैरह ना पड़े।
1: तो उसके बाद इसमें कितना गोबर डालना चाहिए और क्या डालना चाहिए?
0: जी हाँ, इसे जो है टंकी में, जब आपकी टंकी बन जाती है तो नीचे एक परत 2 से 3 इंच जो है बालू की बिछा दें, उसके ऊपर अच्छी मिट्टी अगर जो है तो अच्छी मिट्टी की भी 2-3 इंच जो है परत आप पहले नीचे पेंदी में फैला दें, उसके बाद आप जो है प्रति वर्ग इंच करके जो है आप उसमें केचुआ प्रति वर्ग फीट 40 केचुआ जो है उसमें डाल दें।
1: अच्छा, तो क्या पहले गोबर भर देना चाहिए? हम देख रहे हैं कि भरा हुआ है टैंक।
0: जी पहले नहीं, एकाएक भर देते हैं, इसे जो है आप क्रमशः 4 से 6 इंच गोबर की तह डालते हैं, फिर उस पर खरपतवार जो कूड़े कचड़े हैं जो आपके घरों से भी वनस्पतिक पदार्थ हैं, पशुओं के गोशाले से हैं,
1: सब्जी का छिलका है,
0: सब्जी का छिलका आदि भी आप जो है उसे डाल सकते हैं, जो सड़ सकते हैं या गलत जो उसका भोजन हो सकता है केचुए का उसे आप उसके ऊपर डालें, और इसको जो है प्रतिदिन आप जो है नम छिड़काव पानी का जो है।
1: अच्छा एक चीज और बताइए अवधेश कुमार शर्मा जी, कि ताजा गोबर डालना चाहिए या रखा हुआ गोबर डालना चाहिए?
0: जी थोड़ा सा अगर रखा हुआ गोबर 2-3 दिनों का आप प्रयोग करते हैं तो ज्यादा लाभकारी होता है।
1: जी अच्छा, तो ये क्रमशः परत डालनी चाहिए?
0: जी भैया, परत धीरे धीरे जो है आपके 6 इंच जब गड्ढा रह जाता है नीचे उतना तक भरते हैं उसको।
1: जी जी, और ऊपर से पानी का छिड़काव करते जाते हैं।
0: ऊपर से पानी का छिड़काव नम अवस्था चूंकि

0: कुएं का जीवन चक्र जो है पानी बिना अधूरा है,
1: जी
0: तो वह पानी उसे अब चाहिए उचित नमी चाहिए अपना मूवमेंट अपनी क्रियाशीलता को तेजी से बनाए रखने के लिए, क्योंकि भोजन तो आपने दिया उसे पानी भी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, लेकिन इतना भी पानी नहीं चाहिए कि वह जो है पूरे नम अवस्था उसके लिए बनी रहनी चाहिए।
1: जी अच्छा, अब जब भर जाएगा 6 इंच रह जाएगा तो उसके उसको कितना दिन छोड़ना चाहिए?
0: जी इसे बीच बीच में थोड़ा सा इसकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए बता दें कि पलटते भी रहना चाहिए, हर तीसरे चौथे दिन इसकी पलटाई भी एक साधारण ढंग से कि केचुओं की क्षति कम से कम हो उसको पलटना भी जरूरी है।
1: जी
0: ऊपर से नीचे थोड़ा सा करते हैं।
1: अच्छा कितने दिन में खाद तैयार होती है?
0: यह 45 से 50 दिन में जो है आप अगर इस तरह से करते हैं तो 45 से 50 दिन बाद वह भूरे और दानेदार रंग में वह सारा आपका कूड़ा कचड़ा गोबर है वह पूरी तरह से दानेदार रूप में परिणित हो जाता है। तो इसे जब आपका इस अवस्था की हो जाए दानेदार और भूरे रंग की, उसमें आप फिर निकाल दें टंकी से और इसे एक चलनी से जो तार की जो जाली होती है निकालने के क्रम में कुछ केचुआ भी निकल जाते हैं तो उसे पुनः टंकी में जो है तार की जाली से सारे बर्मी कंपोस्ट को छान लेते हैं। छान लेने के बाद
1: सूखा होने के बाद जब भुरभुरा होता है तब?
0: जी हल्का सूखा हो जाता है, छिड़काव एक आध दिन बंद कर देते हैं और बाहर ही उसको निकाल के ढेर लगा देते हैं।
1: जी
0: और उस ढेर की अवस्था में एक दो दिन रख के फिर उसे फिर छानते हैं।
1: जी
0: छान लेते हैं, छानने के बाद जो केचुए आपको उसमें मिलते हैं उन केचुओं को पुनः फिर टंकी में आप डाल देना।
1: जी और उसके बाद कितने दिनों के बाद इसको खेत में छिड़काव करना चाहिए?
0: जी या आपका जब छिड़कने लायक भुरभुरी अवस्था में हो गई है तो आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो अवधेश कुमार शर्मा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बड़ा सुंदर जानकारी देनी है अवधेश कुमार शर्मा जी, डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा जी, कि बर्मी कंपोस्ट कैसे बनाओ जाओ।
3: और कैसे जानकारी लेते रही डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी।
2: तो दोनों जानी है कि मैंने एक एक बात पूछनी है कि जो बर्मी कंपोस्ट मैंने जो केचुआ वाला खाद
3: जी, जी, जी।
2: तो वगैरह कैसे
3: बनाया?
2: और बहुत अच्छा जानकारी ये रहा कि कैसे हमनी के खेती में लाभदायक बा और खेत के मिट्टी के वगैरह के पोषक तत्व से भरपूर करे में भी केचुआ के कितना बड़ा महत्व
3: बा,
2: ये भी बतौनी है। यहाँ दोनों लोग के बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जा। और देखिए नई उम्र की नई फसल में हमने के मिल्की मशरूम की खेती पर थोड़ा चर्चा कर जा। तो मिल्की मशरूम जौन है, मिल्की मशरूम जौन है तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर वो बढ़ेला और ये प्रोटीन के सुगिया बहन बहुत अच्छा स्रोत।
3: हाँ प्रोटीन के साथे साथे एकरा में विटामिन और खनिज तत्व भी भरपूर मात्रा में पावल जाला और एकर मांग बाजार में भी बहुत अच्छा रहेला।
2: और एकर जो पैदावार बा तो अच्छा होखेला और बाजार में जैसे बताओ तो नहीं बहुत अच्छा माने मांग बा। तो हमनी के मिल्की मशरूम के जगह जो खेती करे वाला बा ओकरा के जरूर चाहिए कि एकर पहले जो कैसे कल जाओ एकर जानकारी ले ले। तो एकर अप्रैल से सितंबर महीना जोन सबसे बढ़िया मानल जाला, 28 से 38 डिग्री सेल्सियस के तापमान अगर होके तो और अच्छा बा और 30-35 दिन में तैयार होके अच्छा आमदनी देवे लगेला।
3: सर ये देखिए सुमन भाई हमने के ये भी जानल जरूरी बा कि मशरूम की खेती हमने के भूसा में कई जला या तो धान के हो या गेहूं के हो कुछ के भी हो सके।
2: यही से देखिए जो अप्रैल के महीना तय बा गेहूं के भूसा ओखरी पर्याप्त आ जाला। तो गेहूं के भूसा चाहे जैसे पुआल हो गई तो ओकरा के स्टरलाइज करके आ बीज के मिला के बैग में भर देवे के चाहिए और 18-20 दिन के बाद में ओकर केसिंग जो मिट्टी के परत करे के चाहिए जो नामे कि 85 से 90% नमी बनावले रखे के चाहिए। और एकरा में देखिए जो मशरूम जो लेकर है तो ये काफी महंगा भी बिकेला, ये 200 रुपया किलो तक बिक जाला। आ ये घड़ी तो लगन के सीजन बात है, घड़ी भाव भी बहुत अच्छा बा, एकर गुणवत्ता बात ओकरा के एकर मांग इतना अधिक बा कि बाजार में आवते अगर बिक्री में।
3: देखिए बैग जब हमनी के भरी न जा सुमन भाई वो समय हम ध्यान रखल जाला, ध्यान रखे के चाहिए कि बैग साफ सुथरा हो और कमरा में लगभग 10 से 20 दिन में बैग के अंदर सफेद लाल जैसा फैलाव दिखाई देवे लगेला। एकरा बाद ऊपर माटी के हल्का जैसन परत चढ़ावल जाला जौना से जौना के केस

0: स्टिंग कहल जाला और कुछ दिन बाद छोटा छोटा एमे मशरूम निकले लगेला जोन लगभग 30 से 40 दिन में फसल तैयार हो जाला। जब मशरूम के आकार पूरा विकसित हो जाए तब ओकरा सावधानी से तोड़े के चाहिए।
1: देखे जोन केसिंग के बात के नहीं है तो केसिंग भी ओकर तैयार करे के विधि कि एकरा में जो दोमट मिट्टी होके थोड़ा सा बालू मिला देवे के चाहिए, कंपोस्ट होके माने बराबर बराबर मात्रा में करके तब अगर मिश्रण तैयार करे के चाहिए और तब एकरा के जिसे कहतनी जो हमनी के बैग में जो डाले नहीं जा तो उन पहले वैसे भरे के चाहिए। तो देखिए अब हमनी के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे से पहले कुछ संदेश बा, आई हमनी के संदेश सुन जा।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण

अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: श्रोता भाई बहन अभी हमने सुनत रहनी है जाकर संदेश। और देखी
1: खेती के संदेश के साथ साथ हमनी के खेती में करी ले जा मन सुमन भाई, और खेती के साथ साथ स्वरोजगार भी अपनावल बहुत जरूरी बा, एक पर हमनी के विशेष रूप से ध्यान रखे के चाहिए।
0: एकदम देखी जैसे खेती हमनी के करत नहीं जा तो वही घरी कुकुट पालन, बकरी पालन,
1: मुर्गी पालन
0: सब हमनी के करते बने जा,
1: मछली पालन।
0: तो हमनी के चाहिए कि भाई अधिक से अधिक आमदनी बढ़ावे के बा, तो ई कुल अगर खेती के साथ
1: जितना
0: साथ
1: ज्यादा काम कर लिया
0: अधिक, अधिक फायदा हुई
1: जी।
0: और देखिए अब एगो मौसम के मिजाज पर हमनी के नजर डाल जाए,
1: बताए
0: कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहे के उम्मीद बा। हवा जो सापेक्षिक आर्द्रता बात 65% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20%। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के इसे चली, और कोई ऐसा खास चेतावनी नहीं है, लेकिन 13 से 17 मई के बीच एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा भी चल सकेला, हल्का से मध्यम वर्षा भी होके के अनुमान बाटे। तो
1: हमने के सतर्क रहे के बाद सावधान रहे के बाद और अपन बचाव के जानकारी रखे के बा, और यही के साथ घड़ी की इशारा बाप सबसे विदा लेवे के चलते चलते सुगिया बहन की तरफ से सब श्रोता भाई बहन के नमस्कार, सुमन भाई रवा के भी नमस्कार,
0: सब श्रोता भाई बहन के प्रणाम, सुगिया बहन रवा के नमस्कार।

किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं सांझ गीत कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत।

ये आवाजें थी शिवम बिहारी और रचना की, प्यारेलाल यादव के लिखे गीत की तर्ज बनाई थी अशोक कुमार दीप ने, फिल्म थी साजन चले ससुराल। और श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन।

0: सकिन।
1: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ
0: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
2: इस संदेश के पहले आपने गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का गीत सुना, मोहन राठौर और उदित नारायण की आवाजों में। प्यारेलाल यादव के लिखे गीत की तर्ज बनाई थी राजेश रजनीश ने। श्रोताओं, आइए सुनते हैं साधना सरगम के साथ उदित नारायण को। विनय बिहारी की शब्द रचना है, धुन तैयार की है धनंजय मिश्रा ने, फिल्म है परिवार।

तो आपने अभी गंगा किनारे मुरा गांव फिल्म में उषा मंगेशकर को सुना और कार्यक्रम का समापन आशा भोसले की आवाज में रूठ गए सैया हमार फिल्म के गीत से। अनजान के लिखे गीत की तर्ज बनाई है चित्रगुप्त ने।

0: तो श्रोताओं, आशा भोसले की गाई इसी रचना के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत कर

0: हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है। और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होकर जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने है, आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहां पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहां पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
1: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
1: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफकोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4

0: बच्चों को ये कंजेनाइटल मैल फॉर्मेशन यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयां जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, बहुत पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। तो बस आज हमें यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए। आयुष

0: नमस्कार।
1: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
0: आयुष्मान, अभी आपने सुना यह प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास।

सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, समाहरणालय कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार तेज आंधी और भारी बारिश से भभुआ प्रमंडल की 4 प्रशाखाओं की विद्युत व्यवस्था हुई प्रभावित। बुधवार को आए तेज आंधी एवं भारी बारिश के कारण भभुआ प्रमंडल अंतर्गत विद्युत आपूर्ति व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई। खराब मौसम के चलते कई स्थानों पर वृक्ष गिरने से 33 केवी एवं 11 केवी फीडरों में बाधा उत्पन्न हो गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। तेज हवा एवं बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने, पिन इंसुलेटर पंचर होने, पोल क्षतिग्रस्त होने तथा विद्युत लाइनों में खराबी आने की घटनाएं सामने आई हैं। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल भभुआ के अंतर्गत चांद, चैनपुर, भगवानपुर एवं रामपुर प्रशाखा क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षति की खबरें हैं। वहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय रोहतास से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 14 मई को जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दैनिक साक्षात्कार किया गया। उक्त दैनिक साक्षात्कार के क्रम में 8 व्यक्तियों के द्वारा आवेदन पत्र, शिकायत पत्र दिया गया। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। भभुआ के विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि तेज आंधी एवं भारी बारिश के कारण विद्युत संरचना को व्यापक क्षति पहुंची है। विभाग की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं तथा विद्युत आपूर्ति बहाल करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि क्षतिग्रस्त विद्युत तार, पोल अथवा उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत विद्युत विभाग को दें। विद्युत विभाग ने आम जनों से सहयोग एवं धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक शानदार नगमा।

0: तो श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
1: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा सीआईएसएफ को मिली कवि विद्यापति के नाम पर होगा हवाई अड्डा। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव में जदयू को हराकर राजद ने जीत दर्ज की। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम शुरू, महीने के अंत तक परिचालन शुरू होने की संभावना। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। श्री चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग की जाएगी।
1: हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो दो मांग जो यहाँ पर आई है, बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो, उसको जरूर कराने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूंगा। सर,
0: श्री चौधरी ने जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने टीएमसीएच में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सबक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत दर्ज की है। उन्होंने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को 354 मतों के अंतर से पराजित किया। यह सीट पूर्व एमएलसी राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। परिणाम घोषित होने के बाद राजद कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय की जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को बधाई दी है।
2: बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
0: पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार करने का अभ्यास है।
3: घड़ी की सुई में जैसे ही 7 बजे सायरन की आवाज से पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में जनजीवन थम सा गया। विद्युतापूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई। 15 मिनट तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई और गाड़ियों के हेडलाइट्स बंद हो गए। इस दौरान लोगों ने संयम दिखाते हुए प्रशासन का पूरी तरह सहयोग किया। एक बार फिर सायरन की आवाज बजने के बाद स्थिति सामान्य हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से दिदेश्री।
0: देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की सूचना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी।
4: एशिया क्राइसिस

0: लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
1: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से अपने कारकेड में वाहनों की संख्या घटाने का निर्देश दिया है। अब राज्यपाल के कारकेड में केवल 3 वाहन शामिल रहेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों को भी अत्यंत आवश्यक होने पर ही सरकारी वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है। इधर नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने अन्य लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने को कहा।
2: मुझको लगता है यथासंभव सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और खुद भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, तो हम सबका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय हित में जितना संभव हो एनर्जी सेव करें। सब लोग प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एनर्जी कंजर्वेशन है उस दिशा में उसके लिए भी मदद करेंगे और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है।
1: खगड़िया जिला प्रशासन ने प्रत्येक शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में कर्मियों और अधिकारियों को बिना वाहन आने की अपील की है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की 100 सदस्यीय टीम बेली ब्रिज का निर्माण कर रही है। बीआरओ के अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चांद ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से के पास 24 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक सेतु पर परिचालन शुरू होने की संभावना है।
3: पहुंचना शुरू हो गया है। अब जो टेक्निकल कार्यक्रम है अलाइनमेंट सेट करके उस पर हम लोग लगने वाले हैं। सामान आने के बाद लॉन्चिंग वगैरह करने में 6-7 दिन 8

0: उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं इस अवधि में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है।
1: दिनांक 14 मई को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर निपटाने का आदेश दिया है। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में टीबी के मरीजों को अब 30 दिनों की दवा एक साथ मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में टीबी की दवा उपलब्ध करा दी गई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने राजद नेता की गिरफ्तारी पर कहा कि यह एक गंभीर मामला है, राजद के नेता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने पूरे भारत में सक्रिय एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम है नीट जैसी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के नाम पे भोले भाले बच्चों को ठगना, और इस ठगों के गिरोह का मास्टरमाइंड है तेजस्वी का दुलारा, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल। तेजस्वी जी, अब आप क्या कहेंगे बताएं।
0: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों को बधाई दी है। श्री कुमार ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। जदयू कोटे के मंत्री सप्ताह में 5 दिन पटना प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी और श्वेता गुप्ता ने लोगों की समस्याओं को सुना। राजगीर में लगने वाले मलमास मेले को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने राजगीर और हावड़ा के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बिहार शरीफ, अस्थावां, परभिघा, शेखपुरा, केउल और भागलपुर के रास्ते चलेगी। हावड़ा राजगीर स्पेशल ट्रेन 16 मई से 17 जून तक तथा राजगीर हावड़ा स्पेशल ट्रेन 17 मई से 18 जून तक प्रतिदिन संचालित होगी। ट्रेन में शयनयान और साधारण श्रेणी सहित कुल 14 कोच लगाए गए हैं। किशनगंज जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे कलगलिया थाना क्षेत्र से एसएसपी और स्थानीय पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और भारत, चीन, कतर तथा सऊदी की करेंसी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी से जोड़कर जांच कर रही है। कैमूर जिले के भभुआ व्यवहार न्यायालय ने असम राइफल्स के सूबेदार मेजर शशिभूषण तिवारी की हत्या के मामले में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर ट्रक, कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गयी। हादसे में 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने और जनता की शिकायतों के प्रति नकारात्मक रवैये को लेकर 3 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। इसमें भर्राई के थानाध्यक्ष अरमोद कुमार सिंह, बिहारीगंज के कृष्ण कुमार सिंह और पुरैनी थाना के चंद्रजीत प्रभाकर शामिल हैं। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र से एसटीएफ और पुलिस की टीम ने हथियारों के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के महम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 वर्ष पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसे रोहतास के

0: 28 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया। इन सभी को वहां बंधक बनाकर काम लिया जा रहा था। इधर शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। इन बच्चों के नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद दोहन की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल परिसर में LED डिस्प्ले और कूलर युक्त RO लगाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने मॉडल स्कूल ओंकार प्रवेशिका विद्यालय केशरबाग का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति कम पाए जाने पर उन्होंने अभियान चलाकर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने पठन पाठन स्मार्ट क्लास ICT लैब की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा CISF को मिली, कवि विद्यापति के नाम पर होगा हवाई अड्डा। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव में जदयू को हराकर राजद ने जीत दर्ज की। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम शुरू, महीने के अंत तक परिचालन शुरू होने की संभावना। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
1: बिहार विधान परिषद के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोजपुर और बक्सर में 12 मई को मतदान संपन्न कराया गया। कुल 6086 निर्वाचक मतदाताओं में 97.96% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना आज 14 मई को हुई, जिसमें राजद के सोनू राय ने जदयू के कन्हैया प्रसाद को 300 से भी अधिक मतों के अंतर से परास्त कर दिया है। यह सीट राधाचरण शाह के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। संदेश से जदयू के टिकट पर विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस सीट से जदयू के कन्हैया प्रसाद, राजद के सोनू राय सहित 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिनमें बागी उम्मीदवार भी शामिल हैं। भोजपुर जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जरूरी आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने आम

0: लोगों से अपील की है कि नागरिक सही सही जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कर्मियों का सहयोग करें। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने और पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील की है। श्री मोदी की इस अपील पर जिले में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सर्राफा व्यापारी चिंतित हैं, हालांकि वे इस विषय पर बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा है कि वे तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल तथा सोना चांदी की खरीद से जुड़ी अपील के पक्ष में हैं। लोगों का कहना है कि यह कदम देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस मंत्रिमंडल विस्तार में भोजपुर से दो नेताओं को मंत्री बनाया गया है। आरा से भाजपा विधायक संजय सिंह टाइगर को इस विधानसभा कार्यकाल में लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। उन्हें उच्च शिक्षा सह विधि विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वहीं जगदीशपुर विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्रिमंडल में नए चेहरे के रूप में शामिल किया गया है। उन्हें योजना एवं विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है।
1: और अब प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
2: बक्सर जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रांगण घर घर जाकर लोगों से जरूरी आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो 30 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि नागरिक सही से जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कर्मियों को सहयोग करें। इससे पूर्व राज्य सहित जिले के 17 अप्रैल से 1 मई तक स्व जनगणना अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से पूछे गए सवालों का जवाब देकर जनगणना में भाग लिया। प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए बक्सर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत उन्हें सहजने और डिजिटलीकरण की मुहिम तेज कर दी गई है। बक्सर में गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की 100 वर्ष से पुरानी एक अनमोल पांडुलिपि प्राप्त हुई है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन इन पांडुलिपियों को डिजिटीकरण और भौतिक संरक्षण पर विशेष जोर दे रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सहले ने सीताराम संग्रहालय का निरीक्षण करते हुए बताया कि यह अभियान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य चलाया जा रहा है। बीते दिनों जिले के व्यवहार न्यायालय में वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झा, डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस शिविर में सुलहनीय आपराधिक मामलों, वाहन दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली विभाग से संबंधित मामले सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपसी सहमति के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। बीते दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इंटरमीडिएट 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में जिले के लगभग 10,000 छात्राओं ने भाग लिया था। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा गया। जिले के हजारों विद्यार्थियों ने बेहतर अंक लाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। सफल छात्र छात्राओं ने उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की, वहीं शिक्षकों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुर और बक्सर जिले की हलचल। भोजपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा, जबकि बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
3: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मनपसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत भी। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपने सुनना चाहा है दिलवाले फिल्म का एक नगमा, कुमार सानू और अलका याग्निक के साथ अजय देवगन की आवाजों में समीर का लिखा गीत नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं

ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ और नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से आते हैं मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नूजहत जहानाज, साजिया शाहीनाज, नारिया नुजीनाज और कुआत बिहार से आते हैं नरगिस जफर, कलेर बिहार से बेगम निकहत परवीन ने भी इस गीत को सुनना चाहा है और इसी गीत के लिए हम एक और फरमाइश आई है। आप हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी ने भी इस गीत को सुनने की इच्छा व्यक्त की है। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये नगमा।

आपकी भी फरमाइशें आई हैं ईमेल के माध्यम से। जी हाँ, आप हैं जिला मऊ उत्तर प्रदेश से, यूएए अंसारी, एके अंसारी, एए अंसारी, एसपी अंसारी और गुड़िया अंसारी। और एक और फरमाइश इस गीत के लिए जो दिख रही है वो है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से, आप हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और आपके मित्रगण। चलिए हम आपको सुना रहे हैं बहुत ही प्यारा नगमा, ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

तो अभी आपने दिलवाले फिल्म का यह गीत सुना और श्रोताओं अब आइए सुनते हैं अभिजीत के साथ आशा भोसले को आनंद बख्शी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है जतिन ललित ने। फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ये लोकप्रिय गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोतागण। जी हां, आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय शेरपुर कला जिला गाजीपुर से, अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। साथ ही साथ इस गीत के लिए हमें

आइए सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का एक नगमा। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है संतोष आनंद ने, स्वरबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं ग्राम नहौना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें आपकी भी आई हैं श्रोताओं। इस गीत को सुनना चाहते हैं खुटानी चौक नरहन स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित जी। और साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं भोपाल वारी उदयपुर राजस्थान से ललित चौरड़िया और स्नेहलता जैन। इस गीत को सुनने के लिए ईमेल किया है आपने भी। आप हैं महावीर स्थान सासाराम से अयोध्या भगत, शिव पूजन भगत, तुलसी भगत और आपके परिवार के सभी सदस्यगण। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का यह नगमा प्रेम रोग फिल्म से। बहुत ही प्यारा नगमा, ये गलियां ये चौबारा जहां उदास शाम किसी ख्वाब में ढली तो है, यही बहुत है कि ताजा हवा चली तो है, हजार बंद हो दैरो हरम के दरवाजे, मेरे लिए मेरे महबूब की गली तो है। लीजिए सुनिए।

दर्द और करुणा से भरा हुआ बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत आपने चुना था। आशा हूं आपने सुना प्रेम रोग फिल्म का यह गीत। फली फूली लताएं डालों पे मुड़ी होती हैं, फली फूली लताएं डालों पे मुड़ी होती हैं, बेटियां चाहे जहां भी हों मां बाप से जुड़ी होती हैं। बहुत ही प्यारा गीत आपने सुना। चलिए हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं भारत फिल्म से।

ज्योति नूरन की आवाज है, इरशाद कामिल के लिखे गीत की संगीत रचना की है विशाल शेखर ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। जी हाँ, आप हैं सकीबा, आलिया, कमाल, मेराज, इब्राहिम, पंकज कुमार, निसार अंसारी, और ये आपने आकाशी सासाराम से लिखा है। और इसी गीत को सुनने के लिए द तिरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने भी हमें ईमेल किया है, और साथ ही साथ ईमेल किया है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जय श्री ने। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का यह गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और मुकेश के युगल स्वरों में धर्मवीर फिल्म का एक गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और इसे सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं गांव फारांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और आपके मित्रगण, और इसी गीत के लिए हमें टाउनशिप सेक्टरेट भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, नटखट आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर का भी ईमेल मिला है और ये एक ईमेल है इसी गीत के लिए। जी हाँ, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह के साथ डॉक्टर अमनदीप ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। चलिए हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, लीजिए सुनिए यह गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम E1 पसंद। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत SP बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म है एक दूजे के लिए और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं छोटी बलिया

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुन लेते हैं जूली फिल्म का एक नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, और इस गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू। और आप हैं इस गीत को सुनने वाले ईमेल के माध्यम से मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी और आपकी सहेलियां। और साथ ही साथ इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें आपकी भी आई हैं। आप हैं गांव जाखोद से शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। और आप हैं बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा और आपके मित्रगण। और साथ ही साथ गढ़नुखा लालगंज रोहतास से आप हैं राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान, ग्राम खरवत गढ़नुखा से मोतीमाला गुप्ता, विजेंद्र पासवान, लाल बिहारी सिंह, और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि और निखिल वर्मा, और एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्बई सिल्लोड से अनिल कुमार घोटके वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से आप हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। और साथ ही साथ महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीना देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, और ये नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से आपने हमें मेल किया है। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अच्छे लाल राय, कारी राय कारी, शोभिकांत झा, सज्जन कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, नवीन सिंह, शब्बीर आलम, जहां आरा बेगम, बुल्की वाली और फलना झा।

0: तो श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही आज के फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा नमस्कार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अच्छा तो मैं ये
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड

0: पाकिस्तान, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त

0: कॉक्स अवेलेबल है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज

0: लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमरीका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमरीका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

للم ही लोकधारा कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 9:15 हुए हैं महफिल। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले गुलाम अली की गाई ये गजल।

मैदियसन की गाई इसी रचना के साथ ही गजलों की हमारी आज की ये महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से हमारा अगला प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रवक्ता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविन्द्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

0: मैंने प्यार।
1: 1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे

अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई।

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो चित्तचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या। साल 2008 में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक।

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रत्न।

हम चार, अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित। इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के साथ अनुराधा पौडवाल को।

ये थे सपना मुखर्जी और अमित कुमार और अपन अजनाथ आशा भोसले की गई इस रचना से। इसमें आप सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से।

आशा भोसले और अदनान सामी के गए इसी एल्बम सॉन्ग्स के साथ ही रस रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तराने।

चित्रपट तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। श्रोता, जब रात्रि ढलती है तो हर एक

लम्हा बड़ी सुकून सा होता है क्योंकि हम विश्राम की घड़ियों में होते हैं और साथ ही साथ गीतों से मन बहलाव की भी चाहत होती है। चलिए आज हम इस चाहत को पूरी करते हैं गीतों के तोहफों के साथ। कहां रही वो गहराइयां अब हंसने और हंसाने में, जो मिलती हैं किसी के साथ जो आंसू बहाने में। तुम आए खुशी आई हंसू, लेकिन अभी कैसे, जरा सी देर तो लगती है रोकर मुस्कुराने में।

0: जीवन में
1: बिलाने के सिलसिले तो चलते ही रहते हैं, रूठने और मनाने से दोस्ती की सुगंध भी आती है। भला कोई रूठे और कोई मनाए नहीं तो फिर रूठने का मतलब ही क्या है।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने संजय चतुर्वेदी के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

तो श्रोताओं, संगीत के सागर से ये थी गीतों के तोहफे, और इन्हीं गीतों के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम से हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

प्रसारण सभा में 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास और पसंद आपके कार्यक्रम सुनिएगा 8:20 पर। पर आप सुनते हैं पटना से प्रसारित समाचार और 9:10 पर सुनिएगा गीत मालिका। दस बजकर 5 मिनट पर हम आपके लिए लेकर आएंगे साप्ताहिक प्रसारण खेल खिलाड़ी और 10:30 पर सुनिएगा लोक माधुरी।

पर 45 मिनट पर आप सुनेंगे रसधार और सांध्यकालीन प्रसारण में 5:30 पर बहने अपना प्रसारण सुनेंगी घर आंगन।

सांझ गीत के अंतर्गत आप सुनते हैं भोजपुरी फिल्म संगीत 6:30 पर संध्या 6 बजे सुनिएगा गांव घर। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। कल का मौसम पूर्वानुमान कहता है कि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा में आर्द्रता यानी नमी की मात्रा 42% रह सकती है। आमतौर पर मौसम शुष्क और धूप खिली रहेगी। अभी आप हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों और कल के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

0: सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports